0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: सोना पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट जिसमें 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ अमानत को अपनी जगह रहने को। आज ही 1-1-1-4-7-5-4-6-4-bankislam.com.pk पर अप्लाई करें। शराय तो जवाबित लागू है।
2: धर्म आशुम वरकोटी वरकोटी के दमुना देयो नवी दुनिया पलोर रवान भी खुद पोलियो रंज दा कदमुनो द्रवले हुंशी नुपदी वजा द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टपोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी द्व सास्की वरकवल माहिरवई जका चुंदा सास्की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजर मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल मंजूरी।
3: अवां जी स्किन डल एंड बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के लियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन की बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ये अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थो खूबसूरत थियन वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज पावर्ड बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़ रतु अचणु सख़्तु सूर वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राति जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं कदम।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2-347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03132525786।
6: जी हा, 2315525786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
2: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: 199 खैबर पख्तूनख्वा में 38,841 बलोचिस्तान में 9,923 आजाद कश्मीर में 2,761 गिलगित बल्तिस्तान में 1,721 इस्लामाबाद में 1,245 एक आलमी मरकज रियाज में 237 उम्मीदवार टेस्ट दींदा उम्मीदवार के लिए यूनियन कार्ड शीट आने की हिदायत कई

गर्मी सबब बेहोश थी गयो। कला तो वेझो एन 225 ते सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन पंज दहशतगर्द मारजी विया, 23 मुगी बाजियाब।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जडहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हिए में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ जीए FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए FM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252786।
5: जी हा, 2315525786।
4: जीए FM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी, खुदा पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी दो सास की वरकवल महेरवई, जकच हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जदहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो एं पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था एं इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086316।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ

0: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-3636-8879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130-86-3163।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
1: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03132525786।
2: जी हा, 2315-2575-786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जदहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
3: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी दो सास की वरकवल महेरवई, जकच हम द सास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यादतवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजर मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

सॉन्ग मेरे सवाल सुनने के लिए. और जी मैं अपना यहाँ पर हमारे साथ कौन कौन मौजूद है. हमारे साथ मौजूद हैं कहते हैं अब्दुल रजाक मोहम्मद खान कंबार वफा जमाल कंबार हाली पटेल स्टाफ से शो सुन रहे हैं आप और शो बहुत अच्छा है बहन सना. अच्छा जी और साथ में कहते हैं कि जी देखते हैं और क्या कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बहन सना कैसी हो ठीक हो आपके शो की कितनी तारीफ करी इतनी कम है. अच्छा जितनी तारीफ करें उतनी कम है. मेरे साथ मुश्ताक अंबार भी आपका शो सुन रहे हैं. अच्छा जी आप सबको मेरा सलाम हो जो जो आपके साथ मेरा शो सुन रहे हैं. तो जी कैसे हैं आप अब्दुल रजाक और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे टाइमली ज्वाइन कर लेते हैं मेरे सवाल सुनने के इंतजार में होते हैं जैसे कि मुझे इंतजार होता है पूरे हफ्ते के आप लोगों के पास जाके आप लोगों से बात करनी है आप लोगों को अपने सारी बात बतानी है एक नया नया सवाल बताना है और आपसे उसके जवाब लेने हैं और आपसे नए नए सवाल के साथ आपके पसंदीदा सॉन्ग भी सुनने हैं. मैं भी सुनती हूँ और आप लोग भी मेरे साथ सुन रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है. तो इसके अलावा ख्याल रखें अपना. जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप बताएं कि आप कैसे हैं और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कहते हैं मसरूर अहमद. ओके जी मसरूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसी हो कराची से मसरूर अहमद आज सना जी हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम का इंतजार था और आप आ गई हैं बहुत खुशी हो रही. थैंक यू सो मच मसरूर अहमद. ऐसे ही मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग जो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं और मेरे पूरे दिन की थकान उतर जाती है या एक बंदा जो सफर करके आ रहा होता है उसकी सारी थकान उतर जाती है. क्या हमने ट्रैवल किया है यहाँ पर आने के लिए आप लोगों से बात करने के लिए. जब आप लोगों को हम लोग इंतजार में देखते हैं मैं आप लोगों को अपने इंतजार में देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है. मतलब एक एहसास होता है कि आप लोग मेरा वेट कर रहे थे या मेरे शो को सुनने के लिए या मुझसे बात करने के लिए आप मेरे इंतजार में थे तो मुझे भी एक अच्छा लगता है. यही एक हमारी जो क्रेजनेस होती है बहुत अच्छी लग रही होती है ना. अच्छा जी इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो बहुत सारे लोग हमारे इसके अलावा भी मौजूद हैं और मैं जिसमें से एक चले नाम ले लेती हूँ नजीर खोसो हमारे साथ कह हैं मौजूद हैं. और नजीर खोसो कहते हैं कि दर्द अपना हो तो खामोश रहो क्योंकि दुनिया को दर्द बताने वाले अक्सर तमाशाई बढ़ा लेते हैं हम दर्द नहीं. जी बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल ठीक कहा आपने. और साथ में कहते हैं कि सोबतपुर बलोचिस्तान से जी कैसे हैं नजीर खोसो आप बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे आज भी एक अच्छी बात भेजी है और मेरे लिए नहीं सारे लिसनर्स के लिए ये बात है और जो सुन रहे हैं उन सब तक के लिए ये बात है. तो बहुत अच्छा लगा कि आपने एक सुबह एक नई बात का मतलब सबको शेयर की नई बात आपने बताई है. तो और इसके अलावा

बताऊं कि आप मेरा सवाल सुनने के इंतजार में थे, आपने मुझे बताया तो नहीं है अभी तक। चलें ठीक है, मैं अपना सवाल आप लोगों को बताने लगी। जी मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने आज ये बताना है, ज्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं है ज्यादा, लेकिन आसान भी नहीं है, लेकिन आप सवाल का जवाब ढूंढ कर दीजिएगा। जी आपने ये बताना है कि अंग्रेजी का वो कौन सा लफ्ज है जो ओ से शुरू होता है मगर पढ़ते वक्त सिर्फ वी की आवाज आती है, वी की आवाज आती है पढ़ते वक्त। तो चाहिए पता लगाइए और मुझे भी बताइए कि ऐसा कौन सा लफ्ज है अंग्रेजी का। वो मैं अपना सवाल आप लोगों से रिपीट करने लगी हूँ। वो कौन सा लफ्ज है अंग्रेजी का, वो कौन सा लफ्ज है जो ओ से शुरू होता है मगर पढ़ते वक्त वी की आवाज आती है। तो जाइए पता लगाइए और मुझे भी बताइए कि ऐसा अंग्रेजी का कौन सा लफ्ज है भाई। तो इसके अलावा जब तक हम लोग देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन मौजूद है, हमारे साथ एक और बंदे भाई मौजूद हैं। वो कहते हैं इकबाल लशारी विलेज सोनू खान लशारी मीरपुर खास से सुन रहे हैं बाजीसना नाइट शो। थैंक यू सो मच इकबाल लशारी, कैसे हैं आप, कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, और घर में बैठ के सुन रहे हैं और या नींद से उठ के सुन रहे हैं, नींद में सुन रहे हैं, या कोई गाड़ी वाड़ी चलाते हुए या बाइक शाइक चलाते हुए सुन रहे हैं, जरा ये जरूर बताइएगा। और जो मेरा सवाल अगर आपने सुना है तो सवाल का जवाब जरूर दे दें मुझे अभी 12 बजे से पहले पहले, क्योंकि अगर आप लोग 12 बजे के बाद जवाब देते हैं या इतने सारे सॉन्ग जमा हो जाते हैं कि किसी की फरमाइश पूरी नहीं हो पाती और किसी की रह जाती है तो आप लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। तो काइंडली 12 बजे से पहले का आज का आपका ये एक टास्क है, जाइए इसका जवाब मुझे दीजिए 12 बजे से पहले, क्योंकि 12 बजे के बाद मैं आपके पसंदीदा सॉन्ग सुनना चाहती हूँ। तो जाइए और जाके पता लगाइए। जब तक हम यहाँ पर सुन लेते हैं एक और सॉन्ग। जी ये सॉन्ग कर दिया है मैंने प्ले और सॉन्ग को भी करते हैं सतन जॉय, क्योंकि आपको पता है कि जब फैजल की आवाज में अगर हम कोई सॉन्ग ना सुने तो हमारी सुबह का आगाज होता ही नहीं, लगती नहीं कि सुबह हो गई है। तो फैजल की आवाज में हम सुनेंगे सॉन्ग और आप लोग भी मेरे साथ मौजूद होंगे, तो आइए सुनते हैं।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जे सिंध में एक चमकंदड़
3: सितानेट जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियन औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3141-200।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻण लाइ खु़शि ख़बरी।

0: छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

नहीं होंगे तो जी जिससे मुझे अभी ज्वाइन किया मेरा सवाल नहीं सुन पाया था जी, उसके लिए मैं अपना सवाल रिपीट कर लेती हूँ कि आपने बताना अंग्रेजी का ऐसा वो कौन सा लफ्ज है जो ओ से शुरू होता है लेकिन उसको बोलते वक्त वो जो है उसकी आवाज जो ना वो वीक ही आती है, लेकिन उसमें से आवाज वीक ही आती है, ऐसा कौन सा लफ्ज है अंग्रेजी का? जाइए और जाके मुझे बताइए कि भाई ऐसा कौन सा लफ्ज है, और 12 बजे से पहले मुझे इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब मुझे कमेंट आ भी चुका है, मुस्कुराए मत मुझे इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब मुझे दे चुके हैं मसूर अहमद। क्या लगता है कि आपको वो जो आपने जवाब दिया है वो आपको ठीक होगा?

अगर ठीक होगा तो आप मुझे इसके साथ अपना पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी लिख के भेज दें भाई, ताकि अगर आपका जवाब ठीक होगा तो हम आपको सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले कर देंगे। तो ऐसे जो सुन रहे हैं मेरे सवाल, सवाल सुनने के साथ अपना पसंदीदा सॉन्ग का नाम जरूर मुझे बता दें, ताकि वो हम आपको सॉन्ग प्ले जरूर करें अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो। और इसके अलावा जो न्यूली बंदे हमें ज्वाइन करेंगे उसका हम सॉन्ग ऐसे ही प्ले करेंगे। जाइए और जाकर मजे कीजिए, अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम बताइए और अपने पसंदीदा सॉन्ग को सुनिए एफएम के ऊपर। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है नूरुल अंतोनिया, हमारे साथ कहते हैं रहते हैं और कहते हैं कि सिस्टर आरजे सना आपका शो बड़ा जबरदस्त है, सुपर डुपर एंड ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच। और साथ में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नूरुल अंतोनिया फ्रॉम बदिन, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेज एंड टेक केयर, अल्लाह पाक आप हमेशा सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन आमीन सुमा आमीन। वालेकुम सलाम नूरुल अंतोनिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कि आप कैसे हैं। और कला आपको भी हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आवाज रखे और बामुराद रखे, और ऐसे ही आप हमेशा खुश रहें और ऐसे ही हमारे शो को ज्वाइन करते रहें और ज्वाइन करते रहें। मेरा शो आपके साथ में होती हूँ पूरे पूरे इतवार इतवार इतवार ओनली ओनली इतवार को पूरे पूरे दो घंटे के लिए, तो आप मेरे साथ मौजूद होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं, बात करते हैं और मजे मजे के सॉन्ग को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जी ऐसे ही आपने मेरे साथ रहना है और मेरे साथ जवाब मुझे जरूर दीजिएगा, नूरुल अंतोनिया मुझे इंतजार रहेगा आपका। और थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, अच्छे अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्स आपने मुझे दिए हैं। अच्छा मुझे टाइप करने के लिए और कमेंट करने के लिए आपने परेशान नहीं होना, आपने टाइप करना है 888-1888-1 पे आप इसके लिखिए, आप लोग मुझे SMS करते हैं मेरे सवाल का जवाब। और जो फेसबुक पे लाइव कमेंट करना चाहते हैं, फेसबुक ऑन करना है, ये फिर ट्वीट का पेज आपने ओपन कर लेना, मेरे नाम का फ्लैट आपको दिख जाए, बता दे सना आओ बात करें, शामिल हो जाते हैं आप लोग, जो कि जहाँ पर दिल की बात, खुशी की बात, हर बात क्या होती है, फन का वीकेंड होता है और उसको मिस करना डोंट होता है। ओके और जाइए जाके और मुझे जरूर बताइए। और अच्छा जी मशहूर अहमद कहते हैं कि फैज़ अली की आवाज में सॉन्ग सुनाएं अगर जवाब ठीक हो तो। अच्छा फैज़ अली की आवाज में अभी हमने एक सॉन्ग सुना था, तो क्या आपने वो नहीं सुना, क्या आप मिस कर गए उस सॉन्ग को? सॉन्ग बहुत ही प्यारा था और तकरीबन तो वो खासतौर पर आप लोगों के लिए ही चलता है वो, क्योंकि फैज़ अली की आवाज यार क्या कहने हैं, मतलब अच्छा लगता है बहुत। अगर सुबह ही नहीं लगती अगर उनके आवाज में एक सॉन्ग ना सुने, सॉन्ग सारे अच्छे हैं, सिंगर सारे अच्छे हैं, लेकिन एक होता है कि यार सुबह नहीं लगती, उसको दिल पे लग जाए तो बस ऐसे ही होता है। तो मैंने वो फैज़ अली की आवाज में हम लोग सॉन्ग प्ले कर चुके हैं, इसके अलावा अगर आपने कोई और सॉन्ग की फरमाइश करनी तो आप वो मुझे जरूर बताएं, ताकि हम वो प्ले जरूर करेंगे अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होता है तो। लेकिन रहेगा मेरे साथ और आपने मतलब देर तक मुझे मेरे सॉन्ग को एंजॉय करते रहना है और सुनते रहना है कि आप लोगों के और कौन कौन से सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं। तो जी ऐसे ही है। और इसके अलावा जो जो मुझे सुन रहे हैं वो जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, और बिना इस खौफ से कि हमारा सॉन्ग पता नहीं प्ले होगा या नहीं होगा, जवाब ठीक होगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो न्यू बंदा होगा मैं उसको सॉन्ग वैसे ही प्ले कर दूंगी। जाइए आप लोगों के लिए डील लगाई है मैंने आज। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और सॉन्ग है यार, तो मैं कहती हूँ कि आज वो सॉन्ग सुन लेते हैं। तो जब तक हम एक सॉन्ग सुनते हैं आप मेरे सवाल का जवाब मुझे दीजिए जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एक सॉन्ग को प्ले और उसके बाद करते हैं बाकी की बातें।

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Pakistan ki shaan, Wadi-e Mehran, Mehran ki pehchan, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
3: Har baar ja nandra kadam, ek nayi duniya da vadhan ta, par polio inan kadman ke roke bhi sage to. इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अच्छा जी, यहाँ पर देख लीजिए फेसबुक पे हमें कौन ज्वाइन करती हैं। फेसबुक पे हमें ज्वाइन करती हुई कहती हैं फरवा गुल, हमारे साथ मौजूद हैं। कहती हैं आई हैव लाइक्ड एंड शेयर्ड योर शो, थैंक यू सो मच फरवा। कैसी हैं आप और कहाँ से आपने ज्वाइन कर दी है? सच में कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरवा गुल फ्रॉम कराची, आप ही आपका शो, अच्छा आप ही आपका शो बड़ा जबरदस्त है, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और आपके नसीब अच्छे करे। आमिर सुमामी और सुमामीन फरवा गुल, सेम दुआ आपके लिए भी कि आप भी हमेशा खुश रहें, आपके भी नसीब बहुत अच्छे हों। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बेटियों के नसीब भी बहुत अच्छे हों और आगे का नसीब भी आपका बहुत अच्छा हो। और कैसी हैं आप और आपने मुझे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और थैंक यू, थैंक्स फॉर टू यू कि आपने मुझे फर्स्ट टाइम अगर ज्वाइन किया है तो आप ऐसे ही आई होप कि आप मुझे नेक्स्ट टाइम भी आप ज्वाइन किया करेंगी। ओनली ओनली संडे संडे रहता है आपका मेरा साथ सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक भी आपका इंतजार जरूर करूंगी। तो ऐसे ही आपने जो है मुझे ऐसे ही ज्वाइन करते रहना, जैसे कि आज आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे जैसे ही सुना। अच्छा, मेरे सवाल का सवाल जो मैंने आपको किया था आपने जवाब अभी तक मुझे नहीं दिया, वो जवाब मुझे जरूर बता दें ताकि जो है ना अभी 12 बज जाते हैं, फिर अगर मुझे देर से अगर आप लोग सॉन्ग बता रहे होते हैं तो फिर वो क्या होता है कि थोड़ा टाइम जो लेट हो जाता है, आप बोलते हैं ना मेरे सॉन्ग आपने नहीं चलाए थे, आप नाराजगी इसका इजहार करने लग जाते हैं, तो ये चीज मैं नहीं चाहती। तो आप लोग जल्दी से जाइए और मेरे सवाल का जवाब मुझे बताइए और मजे मजे सॉन्ग को एंजॉय कीजिए मेरे साथ और सारे मिसफर के साथ। और जो न्यू सॉन्ग हो, जो मैंने नहीं सुनी हो, जो आपने नहीं सुनी हो, तो वो जरूर मुझे बताइएगा। और इसके अलावा खुशी हुई है फरवा गुल आपके कि आप मुझे ज्वाइन किया है। अच्छा जी, इसके अलावा अभी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग जमा हो गए हैं जो कि हमें फॉर्मेट पे प्ले करनी है, तो करते हैं ये सॉन्ग एंजॉय। एक और जैसा कि अभी हमारे पास एक फरमाइश थी कि मंजूर सकरानी का सॉन्ग हमें प्ले करना था, तो करते हैं उस सॉन्ग को भी प्ले और सुनते हैं उस सॉन्ग को भी। तो कर लिया जी मैंने प्ले और रहेगा मेरे साथ, क्योंकि आप लोग जब तक अपने पसंदीदा सॉन्ग का नहीं बताएंगे तो जब तक आज हमारा सेगमेंट पूरा होने वाला है ही नहीं। भाई जाइए जाके पसंदीदा सॉन्ग का नाम बताइए। ओके जी, इंतजार है आपका, कर दिया है मैंने सॉन्ग को प्ले करते एंजॉय।

कलात वे सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन पंज दहशतगर्द मारजी विया टेवी मुगवी बाजियाब आईएसपीआर मूजिब अरड़ा उणवीह सेप्टेम्बर की विचवारी रात दहशतगर्दन एन पंजवीह ते चौकी कायम कई हुई। दहशतगर्दन जो शहरन के अगवा करण भत्तो वठण गाडियो फुरकण जो मनसूबो हो। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई कर नापाक इरादा नाकाम बणाए छड़िया। फायरिंग की डेवट में पंज दहशतगर्द मारजी विया टेवी मुगवीन के बाजियाब कराया वो। दहशतगर्दन के कब्जे में वे अंग में हथियार हथ।

थींदो। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जमान मूजिब इस्माइल बकाई चयो आहे त मोहसिन नकवीअ जो ईरान जो दौरो ॿतरफ़े लाॻापन ते ॿधल हूंदो। मोहसिन नकवीअ जे ईरान दौरे बाबति कंहिं बि अमरीकी पैगाम जी ख़बर न आहे।

135 उम्मीदवारनि समेत मजमूई तौर ते 138,160 उम्मीदवार टेस्ट में हिसो वठी रहिया आहिनि। पंजाब में 19,199, खेबर पख्तूनख्वा में 38,841, बलोचिस्तान में 9,923, आज़ाद कश्मीर में 2,761, गिलगित बल्तिस्तान में 1,721, इस्लामाबाद में 1,245 ऐं आलमी मर्कज़ रियाज में 273 उम्मीदवार टेस्ट ॾींदा। जॾहिं त कराची, हैदराबाद, जामछुरो, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काणो ऐं सखर समेत 8 सेंटरनि लाइ कमेटियूं क़ाइम कयूं वयूं। पीएमडीसी ॼाणायो आहे त हर सूबे लाइ घटि में घटि 2 धार सुवालनामा तयार कया विया आहिनि। इम्तिहाननि लाइ हर पर्चे में 180 सुवाल शामिल हूंदा। आईबीएस सखर जो वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ शेख इम्तिहानी सेंटर जे दौरे दौरान सख़्त गर्मी सबबि बेहोश थी वियो।

0: आहे एहतजाजनि ऐं धरणनि सां मईशत खे नुक़सान पहुचंदो अहिड़नि हालतुनि में धरणा हणणु समुझ खां ॿाहिरि आहे। मुल्क में थींदड़ दहशतगर्दीअ जे पुठियां दुश्मन क़ुवतूं आहिनि। आलमी मार्केट में तेल जो अघु सस्तो थी वियो। पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघ में लाथ जो इम्कान। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल जे अघ में घटिताई रिकॉर्ड कई वई आहे। अमरीकी तेल 1.58% घटिताईअ खां पोइ $100 फी बेरल थी वियो। बरतानवी तेल $103 ऐं इमारती तेल $117 फी बेरल थी वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी। خود پولیو رنز دا قدمونو درولی هم شی، نو پا دی وجا دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازی تکولو جواب ورکوی، او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی، زکه چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی طاقت زیادوی او دا هغی دا خوبون والوت وزری مومی. پولیو یعنی مستقل مازوری.
5: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो।

0: सीमट जी जाली ब्लॉक सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस मली रोड मातली।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहया आयो
0: तो पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125257 86।
0: जी हां 2315525786
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

प्ले करते हैं और अभी एक और सॉन्ग है जो हम प्ले करने लगे हैं, सुनते हैं सॉन्ग को भी साथ में। और ये है तफ़ैल खान संजरानी का, जो कि मसरूर अहमद ने जो हमें राइट आंसर दिया था, सॉन्ग का सवाल नाम उन्होंने नहीं बताया था मुझे, क्योंकि जो उन्होंने मुझे कहा था कि फैज़ अली की आवाज़ में, अगर आप मेरे जवाब ठीक होता है फैज़ अली की आवाज़ में सॉन्ग प्ले कर दिया, क्योंकि फैज़ अली की आवाज़ में एक सॉन्ग प्ले कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये मैं अपने पसंद का उनको सॉन्ग सुना रही हूँ। तो फैज़ खान संजवानी के बाद ये सॉन्ग हम प्ले करते हैं मसूद अहमद के जवाब ठीक देने पर, तो सुनते हैं सॉन्ग को भी करते हैं एंजॉय।

तो जी यहाँ पर सुन रही थी हम लोग एक सॉन्ग जो कि मंजूर अहमद की जो जवाब देने पर ठीक जवाब देने पर जो हमने सॉन्ग प्ले किया था और जी उसके अलावा हमारे पास जो ठीक जवाब दिया था वो थे अब्दुल रजाक और उनका जवाब बिल्कुल ठीक था और जो सॉन्ग फरमाइश की थी वो सॉन्ग हम अभी करने लगे हैं प्ले। तो जी इस सॉन्ग को भी साथ में इंजॉय करते हैं और देखते हैं कौन सा सॉन्ग है, मैंने तो कभी नहीं सुना और

तो जी सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक फॉर्माइट से सॉन्ग, ये भी धनंजय यादों ही अकेली, ओके जी वाला सॉन्ग भी हमने साथ में एंजॉय किया। यकीन है आप लोगों को भी ये सॉन्ग मतलब साथ में एंजॉय किया होगा आप ने। और जिसने ये प्ले करवा अब्दुल रज़ाक जी, उन्होंने भी हमारे साथ ये सॉन्ग को सुना होगा, क्योंकि आप लोग अगर अपनी फरमाइश बता रहे थे। मैं आप लोगों से जब भी कह रही होती हूँ कि अपने फरमाइश बताने के बाद आप लोग मत हुआ करें, मेरे साथ रहे, कनेक्ट हुआ करें, ताकि जो ना अगर आपका सॉन्ग प्ले हो रहा होता है तो आपको पता भी चल जाता है, आप लोग हमारे साथ अपने सॉन्ग एंजॉय भी कर लेते हैं। हम तो करते ही लाजमी, लेकिन आप भी करेंगे ना, जिसने नाम बताया अगर वही ना करे तो फायदा क्या सॉन्ग को प्ले करने का। ओके, और यहाँ पर देख लेते हैं हमारे साथ और कौन मौजूद है। अच्छा जी, कहते हैं कि थैंक यू सो मच जेबर, कहते हैं कि आपने मेरा सॉन्ग जो है प्ले किया, और साथ में कहते हैं करने का मतलब कि जो मैं लास्ट में प्ले करूंगी इसलिए करने का थैंक यू बोला है उन्होंने। और साथ में कहते हैं कि भाई कोई पोएट्री भी सुना, पहले पोएट्री सुनाया करती थी जी, मैं पहले बहुत सारी पोएट्रीज वगैरह सुनाया करती थी। कहते हैं कि अभी भी हम इंतजार में, अगर आपको पोएट्री सुना दें मैं जरूर सुनाऊंगी आपकी सॉन्ग चलाने से पहले, आपका सॉन्ग चलाने से पहले मैं आपको एक पोएट्री जरूर सुना के जाऊंगी। और उसके अलावा कहते हैं मोरो से अब्बास मेहर हमारे साथ मौजूद है। अब्बास मेहर कैसे हैं आप, और कहाँ से आपने मतलब मोरो के किस शहर से किस सिटी से आपने मुझे ज्वाइन किया, लेकिन अच्छा लगा कि आपने मुझे ज्वाइन किया है, और क्या करते वक्त आपने मुझे ज्वाइन किया, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ पर हैं, घर पर हैं, ऑफिस में, बाहर हैं, कहाँ पर हैं, जैसे हैं जहाँ पर हैं वो जरूर बताएगा ताकि पता चल जाता है मुझे भी और सुनने वालों को भी कि मेरे साथ जो लिसनर मौजूद है वो कहाँ से मुझसे बात कर रहे हैं। और बहुत खुशी हुई ऐसे ही आपने हर बार मुझे ज्वाइन करते रहना है अब्बास मेहर, ऐसे ही आपका इंतजार रहेगा हमेशा, जैसे आज आपने मुझे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया और एसएमएस किया ऐसे ही थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आपने मुझे हर बार मुझे ज्वाइन करते रहना है, मैं करूंगी आपका इंतजार जैसे कि आप लोग भी कर रहे होते हैं मेरा इंतजार। तो जी, और मेरे सवाल को सुनने के लिए आप लोग फौरन से रेडी रहा करें 11 बजे से, जैसे कि रहता है मेरा आपका साथ पूरे दोपहर 1 बजे तक, 2 घंटे का साथ होता है, बहुत होता है, और ये बात बहुत जो है बातें करने में पता ही नहीं चलती कि कितनी देर हो जाती है, कैसे गुजर जाता है ये टाइम। तो जो मेरे सवाल होते हैं मजे मजे सवाल होते हैं, दिमाग को तो बहुत जोर बिल्कुल नहीं डालना होता है, तो आपने क्या करना है, मुझे टाइमली ज्वाइन करते रहना है और मेरे सवाल को सुना है, और फौरन से मुझे जवाब दे देना होता है, आपको जिंदा सॉन्ग का नाम बताना होता है और सॉन्ग सुनने होते हैं मजे मजे के। अच्छा जी, जो तो यहाँ पर टाइम होता है हमारे एक छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रोबीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी। خود پولیو رنز دا قدمونو درولی همشی نو پدی وجا دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازی تکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکه چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی طاقت زیادوی او دا هغی دا خوبون والوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
3: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: कर दिया है मैंने सॉन्ग को प्ले और सॉन्ग को सुनते हैं साथ में एंजॉय करते हैं मेरे साथ और सॉन्ग एंजॉय करते हैं उसके बाद मैं करूंगी फरमाइशी सॉन्ग प्ले जो कि मुझे फरमाइशी सॉन्ग प्ले करना था याद होगा आप लोगों को। अच्छा इसके अलावा अगर आप लोग भी कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो वो भी मुझे जरूर बताना चाहिए। कोई बात नहीं तो सवाल खत्म हो चुका है सिग्नल हमारा वैसे ही खत्म हो चुका है तो क्वेश्चन मेरा खत्म है लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और सॉन्ग भी सुनना चाहते हैं वो जरूर मुझे बताइएगा लेकिन अभी हमें इस सॉन्ग को कर दिया प्ले करते हैं मेरे पसंद के सॉन्ग को भी एंजॉय।
1: कश्मीर बीट्स सिंगिंग विद द स्टार्स सीजन 1।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

पहले मैं आपको बताती हूँ कि किसने मुझे कहा था कि प्रतिष्ठा ने जी जयपाल ने खुशरों से सितारों के से सितारों की में सब कुछ है बस एक तेरी कमी है। आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान भूले तो यूं कि गोया कभी थे यूं हमसे हर घड़ी है गुरेजा ये कायनात यूं हमसे हर घड़ी है गुरेजा ये कायनात जैसे हमारा कायनात पर ये मैं पेश की है आप सबको और आप मेरी तरफ से आप सबके लिए है ये डेडिकेट करती हूँ आप सबको आज लिसनर्स को आज के और इस सेगमेंट के आज सारे जो विनर हैं मेरे उन सबको ये डेडिकेट करती हूँ और स्पेशली ये जो की थी और

मैं आपको बताऊं कि जी और क्या बोलते हैं, अभी हम लोग यहाँ एक सॉन्ग प्ले करेंगे और जो कि जयपल की फरमाइश पर था ये सॉन्ग, और मैंने कहा था लास्ट में लेकर जी रखना अपना, आप लोगों ने अपना बहुत सारा किया। अच्छा आज के सेगमेंट में बहुत सारे लोग मेरे साथ न्यू लिसनर्स मौजूद थे जी, बहुत खुशी हुई आप लोग जो मेरे साथ आज फर्स्ट टाइम आए थे। तो जरूर आप लोगों ने क्या करना है, हर इतवार को मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी सुबह 11 से 1 बजे तक रहता है, आप पूरे पूरे 2 घंटे के लिए हर इतवार रहेगा। अब आप लोगों का इंतजार भी मुझे जो न्यू लिसनर्स थे मेरे आज के, तो जी मेरे सवाल सुनने के साथ मुझे जवाब भी जरूर दीजिएगा। और हाफिज है, और जब तक अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में रखना है, मेरी भी दुआ में हमेशा आप लोग रहते हैं। तो ऐसे ही है जी, और यहाँ पर अभी हम एक सॉन्ग के जबल की फरमाइश पर है, तो इस सॉन्ग को भी इंजॉय करेंगे साथ में, और उसके बाद जाएंगे अपने अपने घर, बल्कि मैं तो अपने घर जाऊंगी, आप लोग तो अपने घर पर ही बैठे हैं। ओके जी, और कुछ ड्राइविंग का अलग अलग सी दुआ है कि वो हमेशा की तरह मतलब अल्लाह ताला उनको सेफ सफर मतलब अदा करने की तौफीक अता फरमाए, कि वो अपने घर पे आसानी से पहुंच जाए, जो रास्ते में है भाई, पैदल चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, कार पे चल रहे हैं, जो भी है, और उसके अलावा जो घर में बैठा है अल्लाह ताला उनको मतलब उनकी परेशानी को खत्म करे। आप सबके लिए दुआ मेरे साथ, मेरी दुआ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी, कि मैं मेरे दिल में हमेशा आप लोगों की दुआ रहती है, तो ऐसे ही आप लोग भी अपने दिल में मेरे लिए दुआ रखिएगा और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक अगले सेगमेंट नए सवाल के साथ, तो जाते रखना अपना बहुत सारा ख्याल। दीजिए, मैं यहाँ पर कर दिया है सॉन्ग को प्ले, और ये है हम राजी सॉन्ग, हिस्ट्री है, ये है ड्रामा रूपोश का, ये जो है और सॉन्ग है उसको मैंने कर दिया है प्ले, और ये सुनेंगे हम लोग मिलकर।

सां मुल्क खे रोज़ानो 120 अरब रुपियनि जो नुक़सान थींदो। धरणा हणणु पाण खे तकलीफ़ पहुचाइण वारी ॻाल्हि हूंदी। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो इस्लामाबाद में तक़रीब खे ख़िताब। मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त वॾियुनि ॾुखियाईनि सां मुआशी इस्तेहकाम हासिल कयो आहे। एहतजाजनि ऐं धरणनि सां मईशत खे नुक़सान पहुचंदो। अहिड़ियुनि हालतुनि में धरणा हणणु समुझ खां ॿाहिर आहे। मेडिकल ऐं डेंटल कॉलेजिस में दाख़िला लाइ MDK टेस्ट शुरू थी वई। सिंध जे 34,235 उमेदवारनि समेत मजमूई तौर ते 138,160 उमेदवार टेस्ट में हिसो वठी रहिया आहिनि। पंजाब में 49,199, खेबर पख्तूनख्वा में 38,841, बलूचिस्तान में 9,923, आज़ाद कश्मीर में 2,761, गिलगित बल्तिस्तान में 1,721, इस्लामाबाद में 1,245 ऐं हिकु आलमी मर्कज़ रियाज़ में 237 उमेदवार टेस्ट ॾींदा। जॾहिं त कराची, हैदराबाद, जामछुरो, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काणो ऐं सखर समेत 8 सेंटर लाइ कमेटियूं क़ाइम कयूं वयूं आहिनि। PMDC ॼाणायो आहे त हर सूबे लाइ घटि में घटि 2 धार सुवालनामा तयार कया विया आहिनि। इम्तिहान लाइ हर पर्चे में 180 सुवाल शामिल हूंदा। IBA सखर जो वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ शेख इम्तिहानी सेंटर जे दौरे दौरान सख़्त गर्मीअ सबब बेहोश थी वियो। कलात वेझो सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारिजी विया, 23 मुगवी बाज़ियाब। ISPR मौजूद 19 सेप्टेम्बर जे विच वारी रात दहशतगर्दनि N25 ते चौकी कायम कई हुई। दहशतगर्दनि जो शहरनि खे अॻवा करणु भतवटी फोर्स गुइन खे बाज़ियाब कराए वियो, जॾहिं त दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां वॾे अंग में हथियार हथ। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी अॼु ईरान दौरे ते रवानो थींदो। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान मोहम्मद इस्माइल बकाईअ चयो आहे त मोहसिन नक़वी जो ईरान जो दौरो 2 तरफ़े लाॻापन ते ॿधल हूंदो। मोहसिन

0: आलमी मार्केट में तेल जो अघु सस्तो थी वियो। पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघ में लात जो इम्कान। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल जी अघ में घटिताई रिकॉर्ड कई वई आहे। अमेरिकी तेल 1.88% घटिताईअ खां पोइ $100 फी बैरल थी वियो। बरतानवी तेल $103 ऐं इमारती तेल $117 फी बैरल थी वियो। यमन खां हौसी बागन जा हिक भेरो ॿीहर सऊदी अरब ते मिज़ाइल हमला। रियाज जे बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हमलो नाकाम। सऊदी इतिहाद जो चवण आहे त ताइफ, बेश, फरसान ऐं ॿियनि शहरनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया। हौसी बागन शहरी इलाइक़नि खे निशानो बणाइण जी कोशिश कई। रियाज ते फायर कयो। बैलिस्टिक मिज़ाइल खे हदफ ते पहुचण खां अॻु तबाह कयो वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
5: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उगरायूं, भुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
6: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं

0: सस्ते में सस्ती छित लगरा लाए राबतो कंदा खुदा बख्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
0: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
0: असा जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 03125252586
0: जी हाँ बुड़ी 231 5 5 786
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

पंचवी है 9170233273834309। बड़ी 300 बच्ची है 73 84 309। ही नंबर साइन चिंती तमा रातो करे आराम सा पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के आई डी स्किन जे फेस वॉश के अवेलेबल कराए सगो था। ही ब प्रोडक्ट मार्केट में आयन जनाब अगर तमा इस्तेमाल करन चाहियो था त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा के मिले पई डी स्किन जो फेस वॉश तमा के मिले पियो। ओके जी, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को आपने परचेज करना है और उसके बाद इस्तेमाल करना है ताकि आपको भी पता चले कि भाईजान डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कितने कमाल के रिजल्ट्स हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से खूबसूरती का ख्याल रखते जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करते जाइए। ओके जी, तो जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और जरा बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम अगर पोस्ट पर आते हैं तो यहाँ पर कासिर खान हमारे साथ मौजूद है, कहते हाय हेलो, और फरवा कहती है वालेकुम सलाम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे, आप कैसी हैं आप, मैं ठीक हूं जी आप बताएं, और मोहम्मद अली हमारे साथ है, अजीम एके हमारे साथ है, ओके जी ओके बहुत शुक्रिया आपका भी, और बरकत रमादारी जमाली बलोच हमारे साथ है, आप हमें बलोचिस्तान से सुन रहे हैं, भाई को खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, फरवा लिखती है आप ही अर्ज किया है चले आओ मेरे हमदम मेरी दुनिया अधूरी है हुजूम में दर्द से थक कर तुझे दिल ने पुकारा है। क्या बात है जी, बढ़िया हो गया ये तो। अच्छा, फहीम भाई हमारे साथ कहते कुछ यादों असांजू याद रख जा, कुछ गालियों असांजू याद रख जा, असा गड हुजू न हुजू कुछ पल गड रहियासी उ याद रख जा। वालेकुम अस्सलाम इन मोले इस्लाम अदद, अजा छा हाल आहे, खुश आयो सफा चा को स्लेट कलम मसजी डबे, असा भी अची वयासी प्रोग्राम ते लाजवाब आए हमेशा जिया अवा वांगे, बहुत शुक्रिया आई ठीक ठाक आयो तवा बुधायो पांजा हाल अहवाल। उन के अलावा इंतजार अली हमारे साथ, इंतजार अली वालेकुम अस्सलाम, और कहते असा भी अची वयासी तवाजे प्यारे शो में, तवाजो शो डाडो सुठो आहे, थैंक यू जी थैंक यू, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और मोहम्मद मीरन जकरानी भाई हमें सुन रहे हैं, जेका बाबा से बहुत शुक्रिया। इमरान खान रुख हमें सुन रहे, नाइस यू, थैंक यू इमरान भाई। अच्छा, हजार खान भाई आ चुके हैं, हजार खान जतोई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर हाउ आर यू, गुड शो थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। इंतजार भाई कहते अदा तुम्हारा शो लाइक एंड शेयर करे छो आई, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, शीजा की निदड़ी हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम प्यारी आरजी वेलकम टू शो, तबियत कैसी है, मूड कैसा है, तबियत बस ठीक ठाक ही है और मूड भी बस ठीक ठाक ही है। और वजीर हमारे साथ है, वजीर भाई हमें ठट्टा से सुन रहे हैं, डॉक्टर वजीर अली कहते नाइस यो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहा जाता है। और साथ ही साथ मोहम्मद अली हमें सुन रहे हैं, बाजी सिद्रा अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फहीम भाई, आपने टॉपिक का जवाब दिया, ठीक है जी, निदड़ी ने भी टॉपिक का जवाब बता दिया, क्या बात है। असमत हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम असमत, और अनवर भाई हमें सुन रहे थे अस्सलाम वालेकुम से सी गानो जरूर बुधायो, बिल्कुल भामा कोशिश क्या थी तमाम भाईरन जो पसंद जे जेके फरमाइशू आए उन्हें हलाइंदासी प्रोग्राम में, पर तमाम पोस्ट के जरा लाइक एंड शेयर करना हलजो, आई मुख्य बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के कहीं कहीं परचेज करे वरतो आए, आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम केयर के इस्तेमाल करे पयो। दर्द दिल कहती है अस्सलाम वालेकुम डियर फेवरेट आरजे, चंदा जानी कैसी हैं, मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसी हैं। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक अगर चोर ना ले गए हो तो 10 ही बचेंगे, 10 कैसे बचेंगे बताएं मुझे। निदड़ी कहती है कि वैसे उस दिन मेरा वाला ओएसटी प्ले किया था, हाँ जी बिल्कुल किया था मैंने 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सालार सिकंदर हमें सुन रहे हैं, सालार सिकंदर आपको वेलकम हो गया, दर्द दिल ने भी टॉपिक का जवाब दिया है, बढ़िया हो गया जी। असमत लिखते हैं कि सिस्टर अस्सलाम वालेकुम, मैं राइटर असमत मेमन खैरपुर मीरज से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। खैरपुर वाले लोगों के लिए भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम है जनाब, आप खैरपुर में कहीं भी किसी भी करीबी स्टोर्स पर चले जाएंगे तो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगी। इतनी प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं कि जब आप परचेज करेंगे ना तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का यूज करते रहिएगा ताकि आपको पता चले कि आप अपनी खूबसूरती में किस तरह से इजाफा हासिल करते जा रहे हैं। तो मर्द हजरात हो गए या फिर खवातीन हो गई, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा उठा सकता है। अच्छा, दर्द दिल कहती है कि ख्वाब देख रही हूँ कि सच में आई हो, भाई क्या मतलब मैं कोई सालों के बाद आई हूँ। मैं तो रोज ही आती हूँ और दो दो मरतबा आती हूँ, तो बस ये तो आप बातें बोलना बंद ही कर दे। वैसे कल के लिए थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं कि माजरत, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी क्या मतलब बहुत ज्यादा वाली खराब थी, तो इसी वजह से आपको पता है कि अगर मैं, मुझे ना हल्का सा बुखार होता है तभी मैं प्रोग्राम कर रही होती हूँ, लेकिन वो ऐसा था कि पानी सर से ऊपर जा चुका था, बस इसी वजह से थोड़ा सा छुट्टी कर ली थी। बाकी आपको मेरी आवाज से अंदाजा हो ही चुका होगा कि मेरी तबीयत देखें ठीक नहीं है।

0: स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086313।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300296243। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर बार जा नंदड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन कदमन के रोके भी सके तो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो का बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन्दीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

خلينا قاعد مشكنا. बिल्कुल जी, सो आप मुझे बताएं कहां से सुन रहे हैं और आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली या फिर अभी तक नहीं? भाई मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं नहीं, मुझे ये भी बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो हमारे साथ यहां पर मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सिदरा में आयशा मेमन हूँ, आप हमें ठेड़ी से सुन रही हैं। आयशा मेमन डेली बेसिस पर हमारा प्रोग्राम सुन रही होती हैं और आयशा मेमन जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज भी कर रही है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब भी खत्म हो जाती है तो फिर वो दोबारा लेने चली जाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके वो इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत और इतनी गोरी गोरी हो चुकी हैं कि सब लोग आयशा से उनकी खूबसूरती का राज जानना चाहते हैं। तो क्या बात है आयशा, आपको वेलकम कहती हैं। आप इतनी प्यार और मोहब्बत और खुलूस से हमारे प्रोग्राम को पसंद करती हैं, बहुत शुक्रिया।

मरतबा अगर आप जी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लेते हैं ना, तब तो भाई आप जी स्किन ब्यूटी क्रीम के दीवाने बन जाएंगे, क्योंकि जी स्किन ब्यूटी क्रीम इतनी कमाल की प्रोडक्ट है, इस्तेमाल करने के बाद ही आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, ये अबू हनीफ अलबलोची लिखते हैं कि दीवानगी के सिलसिले का हुए जो मुरीद, इस गेसुए दराज सवा पीर ही नहीं। हाँ जी, थोड़ी समझ नहीं आई बात। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है। इंतजार कहते हैं कि अदा गानो तो बुधाए जो सब कुछ तो है तेरे नाल, मां दिसां थी तांजा गाना जेके लगी सग्या लिस्ट में सब हणाईंदासीं, ठीक है, आई तां के बुधराईंदासीं, पर तां थोड़ो सबर भी कंदा कयो। और चाचा कहते हैं आज कराची में गर्मी बहुत है, गर्मी तो खैर इधर भी है, पता नहीं क्या हो गया, गर्मी दोबारा से वापस आ गई, विच में थोड़ो असांके होप मिली वयो हो त बाबा हाणे सी अची वयो आहे, सियारो अचण वारो आहे, थोड़ी थोड़ी इहे हल्की हल्की थधियूं थधियूं हवाऊं हुयूं, भला ॾींहं गुज़रनि पिया, भलियूं रातूं गुज़रनि। गर्मी ने बोला इतनी भी जल्दी है क्या, अञा हिते असां हूंदासीं बाबा, तव्हांखे अञा थोरो तड़पाईंदासीं, सो वरी वराए गर्मी अची वई आहे। और ये निदड़ी कहती है कि हमें यहाँ सर्दी लग रही है, इसका मतलब ये बुखार का जादू है। हाँ जी, कुछ ऐसा ही सीन है। तो फरवा, आपने टॉपिक का जवाब दिया है, क्या बात है जी, ठीक है। और इकबाल आशारी भाई हमें सुन रहे हैं, आप हमें सुनते हैं जी मीरपुर खास से, क्या बात है, मीरपुर खास में भी आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगा, अगर आपने टॉपिक का भी जवाब दिया है, ये भी ठीक है। भाई फहीम के कान जो है ना माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, वो ऐसे सेंस कर लेते हैं सारी बातों को। ऐसा है ना फहीम, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये चीज जरा नोटिस करी है। अच्छा, अब्दुल गफार भाई हमारे साथ कहते हैं सलाम खुलूस, वालेकुम अस्सलाम, और आप हमें मेलसी स्किन ब्यूटी क्रीम भाई मिल रही है, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइएगा और मेलसी से आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करनी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मैंने देखा था मेलसी में भी मिल रही है, तो आप जाइएगा और परचेज कीजिएगा, ठीक है अब्दुल गफार भाई। अनवर भाई, आपने इतनी लंबी चौड़ी सी शायरी भेज दी है, सो जरा मैं माजरत करूंगी, क्योंकि वैसे ही मैं थोड़ा कम बोल पा रही हूँ आज के प्रोग्राम में, तो इतने लंबे चौड़े मैसेजेस मतलब आज नहीं करें, ठीक है। हिदायत अल्लाह, आपने टॉपिक का जवाब दिया है और कहते हैं एक भी नहीं बचेगी। हाँ भाई, आपने तो वखरा ही जवाब दे दिया। अच्छा, हजार भाई कहते मेरा जवाब गलत था इसीलिए मैं हंस रहा था। हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इंसान को अपने ऊपर भी हंसना चाहिए। और इनका अलावा अब्दुल गफार भाई, आपने टॉपिक का जवाब दिया है, बढ़िया हो गया जी। और ये अबू हनीफ लिखते हैं कि आंसर ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, पोस्ट को लाइक और शेयर कर रहे हैं या फिर नहीं, जल्दी से कीजिए, क्योंकि ये भी आप ही लोगों का काम होता है, तो कीजिए अपना काम, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और नंबर्स के ऊपर रابطہ करते रहिए, जो नंबर आपको बताती हूँ, ताकि नंबर के ऊपर रابطہ करेंगे ना तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो अवेलेबल हो जाएगा। तो डी स्किन का फेस वॉश हो या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, यूज करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। और हाँ, आप मर्द हजरात हैं, खवातीन हर कोई इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि भाई ये सारे प्रोडक्ट्स आप सब लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, तो चाहे वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन का फेस वॉश हो, यूज कीजिए और खूबसूरतियां हासिल कीजिए। जी जी, चाचा खालिद, आपने टॉपिक का जवाब दिया है जो कि मतलब सही है। अच्छा फरमा की थी आप ही, मुझे शो की स्टार्टिंग में आपकी आवाज से पता चल गया था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ओके ओके। अच्छा, मलिक नजर हमारे साथ कहते हैं, मलिक नजर हुसैन ओके जी, खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपको वेलकम कहते हैं। अली रज़ा लगारी हमें सुन रहे हैं, कहते हैं सिस्टर सिद्रा आप कैसी हैं, शो तमाम नाई से तमाम एसएमएस प्रोग्राम में शामिल करें, हम आपको एसएमएस करते हैं, आप प्रोग्राम में हमारा एसएमएस शामिल नहीं करती हैं, सिस्टर आप हमको प्रोग्राम में शामिल किया करें। जी जी बिल्कुल, भाई को शामिल प्रोग्राम रखा गया है। और उनखा अलावा तां खींचूं था भली करी आया, तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कजो, ठीक है। और उनखा अलावा हिते टाइम थे बाबा न्यूज ब्रेक वठूं था, उनखा पो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुंदा, वापसी जल्दी मोटी तव्हांजी नासी, तव्हांखे कार्ड ॾेई बि नाहे वञणो, हिते वेठा हुजो, मां हीअं वञी ओ हीअं वटां थी, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 का 6:30 वगे शाम ताई। नोट असा वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
1: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

विटामिन ई बी और जदीद माइक्रोबीट फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

भई इहा ॻाल्हि ई मारे छॾे थी, बाक़ी ॿियो ॿियो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमाल करे ॾिसो। अच्छा, हिते ई असां सां गॾु मौजूद आहे शहर गुलाब लगारी ॻोठ बाशम खान रिंद से शायर गाज़ी खान रिंद, रिज़वान अली रिंद, फैज़ान अली रिंद, शहज़ाद अली रिंद, छोटी कुनैन ज़हरा, आपका शो सुन रहे हैं। अल्लाह पाक आपको और आपकी एफ एम की टीम को, सुनने वालों को खुश रखे, आमीन सुमामीन। क्या बात है, कितनी अच्छे लोग इन देख ले, सबको दुआएं दे दी, बहुत शुक्रिया।

ओके जी गोट मोहम्मद तैयब थेबू से हबीबुल्ला थेबू भाई कहते हैं आपका शो वेरी नाइस है, सलाम आपको जी, वालेकुम अस्सलाम आपको। और हबीबुल्ला थेबू कहते हैं सॉन्ग बुद्ध राय जो हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हाजिर हाजिर, हो सकेगा तो यो गानों तांज हलाए बैठूं था। मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहते बाजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है। हाँ जी बिल्कुल, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले लोग बिल्कुल यही कह रहे हैं। ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम शहर गुलाब लगारी गोट बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद फैजान अली रिंद और शहजाद अली रिंद कहते हैं बाजी जवाब खां पोए ते लगे तो मुखे तमाजो मैसेज थोड़ो मिसिंग पार्ट थी वयो आहे सो भाजो मोहब्बत हुआ तां प्रोग्राम बुधो पया। थैंक यू वेरी मच।

जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो आदत भी हली वेंदी सही आहे ऐं तव्हांखे ख़ूबसूरती बि मिली वेंदी. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद साबित रहंदो. और रफ़ी सोलंकी में सुन रही है फ्रॉम मोरो सिटी, कहते हैं फर्स्ट टाइम SMS किया है आपके प्रोग्राम में, वेरी नाइस शो, सलाम टू ऑल लिसनर्स एंड यू, टॉपिक का जवाब है क्या बात है बढ़िया जी. कहते हैं कि जो ठीक है एक्सप्लेन कर दिया सारा मैसेज. ओके बहुत शुक्रिया आपको, हम वेलकम कहते हैं हफीज सोलंकी भाई. और अंसर हमारे साथ हैं जी, अंसर भाई आपको भी वेलकम हो गया. शहजाद अली राजपेट फ्रॉम बसीरो कहते हैं कि तुम नजरों से दूर हो, आंखों से नहीं, ख्वाबों से दूर हो, ख्यालों से नहीं, तुम दिल से दूर हो के बाद आपका मैसेज ही हमसे दूर हो गया. क्या बात है जी, बहुत बढ़िया. ऐसे आधा मैसेज इंग्लिश में लिखकर आधा उर्दू में लिखेंगे तो ऐसा ही होता है. सो कोशिश क्या करें, या पूरा उर्दू में लिखा करें या पूरा इंग्लिश में लिखा करें, ठीक है. और बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आप हमारे साथ हैं. और इरम हमारे साथ कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, अल्लाह पाक जल्दी आपको सेहत याब करे, आमीन आमीन. बहुत शुक्रिया इरम. कहती हैं यार मेरी भी तबीयत अभी तक थोड़ी सी खराब है, मेरे लिए भी दुआ करो जी. आपके लिए भी ढेर सारी दुआ. और इरम क्या कहती हैं, अच्छा इतना ही मैसेज था, ठीक है. अच्छा कहती हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब तो मैंने कब का छोड़ दिया, मेरे ख्याल में ये दूसरा साल स्टार्ट हो गया होगा या तीसरा. और ये मुनव्वर भाई कहते हैं मुनव्वर अली मुगल मीरपुर खासी, हाय बेना लाड़काना में बिरयानी पुलाव या चावल क्या मशहूर है. भाई लाड़काना में तो सारी चीजें ही अच्छी मिलती है, मैं तो एक मतलब फूडी इंसान हूँ तो मुझसे ये खाने पीने के मामले ज्यादा मत पूछा करें, क्योंकि मेरे पास च्वाइस नहीं होती. मैं कहती हूँ भाई ये भी चीज बड़ी अच्छी मिलती है, ये भी चीज बड़ी अच्छी मिलती है, तो मैं सही से आपको नहीं बता पाऊंगी भाई आपने क्या लेना है क्या खाना है. बिरयानी तो मतलब लव है, ऐसा समझ लें, बिरयानी तो मतलब सावा. तो बिरयानी तो कहीं से भी मिल जाए तो हमें अच्छी लगती है. असा एक दफा इतना बिरयानी खाधी से चवे वाह वाह वाह, अड़ी बिरयानी तो कोई नहीं हों, वरी बेहंदा खाईंदा चंदा जी वाह वाह वाह, अड़ी बिरयानी तो कोई नहीं हों. सो हमारा ये वाला सीन चल रहा है. बाकी लाड़काना में बिरयानी बहुत सारी जगहों पर अच्छी अच्छी मिलती है, और पुलाव भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा मिलता है. और मुनव्वर भाई कहते हैं मीरपुर खास में सुबह दो. ओके ओके आपने टॉपिक का जवाब दिया सही, मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया. बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई. ठीक ठाक है, आप बताएं जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं नहीं, ये भी बताइएगा.

क्या बात है, प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे हो रहे हैं। भाई जान, थोड़े से आके खर्चे कराएंगे तो क्या ही हो जाएगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपकी खूबसूरती आपको मिल जाए, और ऐसी वाली खूबसूरती जो कि हमेशा आपके चेहरे पर बरकरार रहे, और हमेशा जो हुसन तव्हांखे खपे थो ना, वो तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾियण वारी आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कयो बाबा जी, तव्हांखे ख़बर पए त मार्केट में हाणे भला प्रोडक्ट बि अचणु स्टार्ट थी विया आहिनि। छो त कई मरतबा ईअं बि थींदो आहे त छो त असां वेंदा मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट देकर हम एक तो बात यह है कि भाई परेशान हो जाते हैं त असांखे कहिड़ो प्रोडक्ट वठिणो आहे, कहिड़ो प्रोडक्ट वठणु घुर्जे, ॿियो वरी असां दिमाग़ ख़राब दुकानदार करे छॾींदा आहिनि। ही वठी वञो, ही भलो अथव, ही भलो अथव। हुननि खे त ज़ाहिर पंहिंजो माल खपाइणो हूंदो आहे न, पर तव्हांखे सफ़ा पको पह करे वञणो आहे त तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो ही मतिलब जेको आहे न परचेस करणी आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो ही इस्तेमाल करणो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते हलिया वञो, उतां मालूमात वठो। अगरि तव्हां सिटी वञणु पसंदि कयो था त सिटी वेंदासीं, शहर वेंदासीं त वठी ईंदासीं, पोइ तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको आहे सो वठी सघो था। ऐं हर हंधि अवेलेबल आहे तकरीबन, पर पोइ बि अगरि ईअं आहे त तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते कोन मिली रही आहे त तव्हांखे जेको नंबर ॿुधाए थो हुन नंबर ते राबितो करे वठो, ऐं राबितो करण खां फौरन बाद ई तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल थी वेंदी बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ऐं अगरि तव्हां नंबर अञा ताईं नोट नाहे कयो त तव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर नंबर ॿुधाए थी, नंबर खे नोट करे वठो। ओके जी, नंबर आहे 033-27-38-43-09। ॿुड़ी 332 63-84-309। ऐं ॿियो नंबर आहे 03-12-50-25-907। ॿुड़ी 312 50-25-907। ऐं तारिक भाई जो ई नंबर अथव, तारिक भाई सफ़ा ईअं मतिलब मोबाइल ते चढ़ियो वेठो अथव। तव्हां जंहिंमहिल बि फोन कंदा न, तारिक भाई अटेंड करे तव्हांखे चवंदो, हलो ॿुधायो बाबा किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराइणी आहे। ऐं पोइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे एरिया में मिंट में अवेलेबल थी वेंदी। सो तव्हां राबितो कयो बाबा, ऐं फोन करे उन्हनि खां पुछो हाल अहिवाल वठो, किथे किथे अवेलेबल आहे, ऐं हिते हिते फलाणी फलाणी जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या डी स्किन जो फेस वॉश हुजे नथो मिले, त तव्हां उन्हनि खां पुछा करायो, उन्हनि खे चओ, ठीकु आहे, उन्हनि खे ॾसियो बाबा त किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराइणु घुर्जे। ओके जी, सो तव्हां ताईं जिते जिते बि मुंहिंजो आवाज़ वञे पियो, तव्हां सभु माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश जो यूज़ कयो बाबा। ख़ूबसूरती हाणे तव्हांजी तव्हांजे हथनि में आहे, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश हाणे तव्हांजे सफ़ा क़रीब अची पहुतो आहे। सो तव्हां बि इस्तेमालु कयो, प्रीमियम क्वालिटी जा प्रोडक्ट आहिनि, तव्हां हेॾा मतिलब पंहिंजी सॼी ज़िंदगी में जेके बि प्रोडक्ट लॻाया हूंदा न, उन्हनि खां 10 गुना छा मतिलब 100 गुना ज़्यादा ई प्रोडक्ट बहितरीन आहिनि। ऐं हिननि खे मेडिकेटेड फार्मूले सां तयारु कयो वियो आहे, ऐं स्किन सां रिलेटेड जेके डॉक्टर्स हूंदा आहिनि उन्हनि मिली करे ई फार्मूलो याद कयो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां ट्राई करे ॾिसो, तव्हांखे यकीनन ॾाढा सुठा ई प्रोडक्ट लॻंदा। सो तव्हां अॼु ई इस्तेमालु करणु स्टार्ट कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे ॿिनि रातिनि जे इस्तेमाल खां फौरन बाद ई रिज़ल्ट ॾींदी, छो त हिन जे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स आहिनि, ही 2-in-1 फार्मूलो आहे, यानी कि नाइट क्रीम आहे तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी अहिड़ो जो ॾियण तव्हां फेशियल करायो आहे, सफ़ा महांगो फेशियल करायो आहे। सो मुनासिब पैसनि में तव्हांखे अगरि को एॾो सुठो प्रोडक्ट मिली रहियो आहे त बाबा को नाशकरो हूंदो जेको न कंदो, वञो बाबा परचेस कयो, इस्तेमालु कयो, ऐं सुहिणा सुहिणा थी अचो।

0: ते।
1: अच्छा फहीम भाई, हिते नंबर सिंधी में हिक करे बुधाए अदा, जीअं बुड़ी हिक ब टे चार पंज, असांखे 300 400 लिखण न ईंदा आहिनि, तव्हां 1 2 4 5 वारो लिखो सही आहे। बुड़ी 300 400 वारो जेके हूंदा, जेके लिखण वारा उहे लिखी वेंदा, सही आहे। तव्हां 1 2 3 4 वारो लिखो। और इन लाइ मां तव्हांखे भई ॿिन्ही तरीक़नि सां ॿुधाए छॾींदी आहियां। तव्हां पोस्ट खे लाइक शेयर नायो कंदा, तव्हांजो कसूर आहे। सो पोस्ट को लाइक शेयर कीजिए। और जी हिदायत अल्लाह कहते हैं कि नहीं जाते न आपका शो भी सुनते ही आदत हो गई है, अब ना सुने तो मजा नहीं आता। अच्छा माना यह गाल हुई, सही सही। अच्छा रमजान भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं बहन अहमद मुगल का कोई भी गाना आपसे एक वीक से फरमाइश कर रहा हूँ, प्ले नहीं। नहीं भाई, मैंने तो अहमद मुगल का आज ही गाना देखा आपकी फरमाइश में, तो मैं देखती हूँ टाइम बच गया तो लगा देंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं जी दर्द दिल, कहती है कि किसी ने मुझसे पूछा तुम हमेशा हर किसी के लिए क्यों मौजूद होती हो, मैंने जवाब दिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि कैसा महसूस होता है जब आपके लिए कोई भी मौजूद न हो। अच्छा तो गाल कही दे। अच्छा तालिब मरी भाई, बहुत शुक्रिया, आप बताएं आपके सिटी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर नहीं। अच्छा ये पूछ रहे हैं कि भाऊ लाड़काना में चिंगचियों का हवाल बताओ, चिंगचियों जो सागोई हाल आ बाबा चिंगचिन की वरी छा दूंगा। ये हमारा जिगना हराम करेंगे। और हजार भाई कहते हैं कि हम भी आपका शो एंजॉय कर रहे हैं सिस्टर, बहुत शुक्रिया जी, एंजॉय करते रहिए। रमजान भाई कहते हैं कि मिटा दी अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि देना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। और कहते हैं कि लप्पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। वाह वाह वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। दर्द दिल कहती है कि बस करो चंदा मेरे मुंह में बिरयानी का नाम सुनते ही भाई मुंह में पानी आ गया, क्या बात है। तमाम भी बिरयानी लवर आयो ना करें भाई। रहमान अली शंबानी भाई हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, कहते हैं नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच। निदली कहती है कि लाड़काना में हाँ जी हाँ जी सभी अच्छे हैं, बस ये जो पहली आपने चीज लिखी ना उसको छोड़ के। अली रजा लगारी भाई हमें सुन रहे, कहते गोठ जाम खान लगारी से, अली रजा लगारी सिस्टर वालेकुम अस्सलाम भाई, आपने वही मैसेज कॉपी पेस्ट कर दिया, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं। और आपको दिल के तांगे रही से वेलकम कहते हैं। और आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा। और गुलाम मोहम्मद मरी बलोच वालेकुम अस्सलाम सिदरा, बिल्कुल ठीक ठाक है। और आप हमारे साथ हैं डॉक्टर कश्यप मरी बलोच फ्रॉम मीरपुर खास। ओके डॉक्टर कश्यप मरी को हम दिल से वेलकम कहते हैं शो बेस्ट है सिद्रा जानी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कश्यप। अच्छा मुगल उमरानी भाइयों में सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, स्टिकर्स भेज दिए हैं। और कामरेड मोला बख्श हमारे साथ हैं, कहते हैं माशाल्लाह शो, थैंक यू जी। और अबू हनीफ अलबलोची लिखते हैं कि मैम आपका प्रोग्राम बहुत नाइस है, 2 घंटे ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कोई गम है ही नहीं। हाँ बाबा हाँ सही था जो दुनिया में गम किथे आए न, ये अजायो माण्हू एॾो मतलब मथे रखियो आहे दुखनि खे, नाहे बाबा कुझु भी ना है, पानी जिंदगी में चिल रहो, रिलैक्स रहो, मूड के सफाई हैप्पी शेपी रखो, कुछ भी ना है, खिल भोग में जिंदगी गुजारियो बाबा, 4 ढी जिंदगी लगे तो 2 ढी गुजरी वया, बाकी 2 ढी बचाए एंजॉय कयो, डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कयो।

क्या बात है, दर्द दिल कहती है कि जब तुम आ जाती हो चंदा शो करने। हाँ हाँ, मैं तो आ ही गई हूँ, लेकिन अब आप बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके घरों में कब तक आ जाएगी। हयाती अजाब आ, पर कई भी माण्हू केतिरो पंहिंजे ज़हन ते सवार न कयो, हिन खां बिना हयाती सफ़ाई अज़ाब लॻे थो बाबा। खोड़ चीज़ूं आहिनि मोहबत के सिवा, और बि बहुत चीज़े आहिनि भई दुनिया में। अनवर भाई हमारे साथ, अनवर भाई थैंक यू सो मच। फरवा आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। हज़ार भाई कहते हैं सिस्टर आज आपका शो लाजवाब, जबरदस्त और बेहतरीन था, मजा आ गया शो सुनकर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और अली रजा लगारी भाई आपको भी प्रोग्राम हमारा पसंद आ गया है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गोठ जाम खान लगारी में तव्हांजे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी कोन, अली रसा भाउ मूंखे ॿुधाइजो, जंहिंसां ख़बर पई त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर जॻह ते मिली रही आहे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाए छॾींदो, तव्हांजी ज़िंदगी खे चेंज करे छॾींदो। छो त हाणे मार्केट में अहिड़ा भला भला प्रोडक्ट अचनि था, तव्हांखे इन चीज़ जो शायदि अंदाज़ो न हूंदो, तव्हां जॾहिं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाह जो प्रोडक्ट आहे।

0: शादियों करे
1: दुख ने जो माज में भार था।
0: अच्छा नजर मोमन बेटी भाई वाले को मसलाम छाला तानो खुशायो सफा मोबतुआन बाबा प्रोग्राम के पसंद करो पया मोमन जमान भाई ये थे। अरे हाँ बाबा डी स्किन ब्यूरे क्रीम का वन फुल ड्रम परचेज कर रखा हुआ है कमरे की साइड में। घर आने जाने वालों को कहा है कि यहाँ से डुबकी मार के जाया करो। मुखे लगल सरकार के डबी उनके डींदा हों बाबा ये खड़ी वनो खड़ी वनो पर उनके तो टुबो जारायो था। सही है यो भी सही है। अच्छा ये हमारे साथी जी फहाद बलोच भाई वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसे ही ठीक ठाक है मजे में है। और चाचा कहते हैं लास्ट सैडी लिंक शाम 5 बजे वाले शो में आओगी आप। हाँ बिल्कुल इन में आई है तो और फहाद भाई कहते काफी टाइम के बाद आज आपका शो सुन रहा हूँ शामिल हो रहा हूँ आप सिद्रा थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई रोज ही आया करे ना दी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करे नहीं बताए तो।

नहीं फहीम भाई, वो डर डर के नहीं, बस ऐसा है कि थोड़ा गला खराब है ना, तो उस वजह से वो आपको ऐसा लग रहा होगा। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। वरी चंदा असांखे 1 2 3 4 भी लिखना नहीं आता। अरे बाबा, बाकी छा ईंदो अथव लिखण? अच्छा कॉमेंट लिखण ईंदो अथव। सही सही। स्किन ब्यूटी क्रीम लिखण ईंदी अथव? मूंखे लिखी त ॾेखारियो, ॾिसां तव्हांखे अचे थो लिखण। और नज़र मोहम्मद भट्टी भाई कहते हैं शमन जो गानो, शमन जो गानो तव्हांखे ॿुधरायूं था, थोरो सबर कयो। सिकंदर अली कहते हैं कि सिस्टर जो बाबा ही शायद बबर हले तो ॿुधोसि।

अच्छा जानी चाचू हमारे साथ कहते हैं मास्टर मंजूर जो गानो चाचू हली वयो आई ता नबो दो छाबला डेडिकेट कर तो अजरा खोसो आई मुखे सो थैंक यू सो मच ता स गड मौजूद आयो। मुनवर भाई कहते हैं कि जी हाँ बहना फेस वॉश का इस्तेमाल करता हूँ रोज। मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। ऐसे ही ठीक ठाक रहे, खुशबाश रहे और हमारे साथ रहे। एरम कहते हैं कि यार आपने थर्सडे को शाम वाले शो में बताया। हाँ ना तभी से बस सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया हमारा। और ये मुनव्वर भाई कहते कि बेना भाई ये आपने कैसी बात कह दी, उनको तो हमारा प्रोग्राम नहीं अच्छा लगता। सच में ये देखकर मुझे बड़ी हैरत।

भाई सही आहे भलो आहे तव्हां पोस्ट खे लाइक शेयर कोन कयो अञा ताईं करे वठोसि हाणे थोरो टाइम बचो अथसि सही आहे ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमाल कोन कयो करे वठोसि बाबा थोरो टाइम बचो प्रोग्राम ख़तम थियण में बाक़ी त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे सघो था तव्हां राजो लॻायो ठीकु आहे लॻाए सुम्ही पोइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे एॾा भला रिज़ल्ट ॾींदी तव्हां पाण चवंदा वाह वाह असां छो एॾी लेट कईसीं डी स्किन ब्यूटी क्रीम त असांखे तॾहिं लॻाइणु घुरिजे पई जॾहिं सिदराबाजी पहिरियों प्रोग्राम कयो हुयो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां हाणे बि यूज़ करे सघो था तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ऐं ख़ूबसूरती जी दुनिया में तव्हां बि कदम रखो बाबा तव्हां सभु मर्द हुजो मायूं हुजो तव्हां सभु डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे सघो था ऐं अगरि फ़र्ज़ु कयो तव्हां क्रीमुनि खां थोरो अवॉइड कंदा न इस्तेमालु करे सघंदा आहियो या फिर कोई मसलो आहे स्किन सां रिलेटेड त तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश ट्राए करे सघो था ठीकु आहे ऐं डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे न उहो तव्हां जॾहिं इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी वाक़ई बाबा एॾा भला भला फेस वॉश मार्केट में अची विया आहिनि पर डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे उनजो त कमाल जो रिज़ल्ट आहे तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो ऐं तव्हांखे ख़बर पवंदी त केॾा भला प्रोडक्ट आहिनि सो यूज़ कयो ऐं ख़ूबसूरत रहो बाबा।

0: गाना बहुत अच्छा है। ड्रामे को जरा थोड़ा साइड पे रख के बात करें तो बीना ने सारे पाकिस्तान क्या मतलब इंडिया की भी खवातीन का जो दिमाग है ना थोड़ा सा खराब कर दिया है। वो ऐसे क्योंकि
1: मौसम
0: बातें सारी ठीक है ना हो, बस वो जो उसने तरीका चुना ना वो थोड़ा सा गलत था। खैर
1: सारे हसीन चेहरों,
0: अगर ऐसा होता मतलब अगर मतलब मुझे ये चीज होती कि मैं इस ड्रामे को जरा सही तरीके से बताती तो हाँ वो चली भी जाए कोई मसला नहीं, लेकिन उसने ऐसा था कि वो अपनी स्किल्स को ज्यादा इम्प्रूव करती, कुछ अच्छा अपने लिए करती, कोई बिजनेस करती, कोई एनजीओ खोलती वुमेन राइट्स के हिसाब से। लेकिन ये क्या तरीका था बहन, अजीब ही औरतों का दिमाग खराब हो गया। यानी कि इसने प्रूव कर दिया कि ये सईम जाहिल।
1: मौसम बाहर का,
0: बाकी सारी बातें साइड पे, गाना बड़ा अच्छा है तो हम एंजॉय करेंगे। भाई अपनी स्टडी को जरा अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, पढ़े लिखे देश का नाम रोशन कीजिए। और दर्दे दिल बहुत शुक्रिया मेरी जान, निदड़ी आपका भी बहुत शुक्रिया, ओ इन्ना शाला। अली रजा लगारी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे पूरे प्रोग्राम में। और फहीम भाई
1: मेरे लिए तो वही,
0: अच्छा मजीन भाई आपके तो फिर
1: तो।
0: यासीन खंड हमारे प्रोग्राम में लास्ट में आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया जी, आपको भी वेलकम हो गया। चाचा खालिद हाँ जी, और भी बहुत दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। और जी हिदायतुल्लाह थैंक यू वेरी मच। हजार भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बस लेते हैं आप लोगों से इजाजत।
1: जब तो यार
0: अच्छा जेको मानू चाहे तो ना गिफ्ट गिफ्ट दियो असांगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम असां गिफ्ट दियो तमा सबरीन के यारा तोफन जी सलामी आई तमा के ना तोफन जी अगिया बिहारे कर वठो बाबा पान एतो भी पान दे खर्च न कंदा वडा कंजूस आया कसम सा ये पैसा बचाए तांगे बंगला ठहराणा है वठी जो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन जो फेस वॉश हणो खुश थियो जिंदगी में खूबसूरती के डिसी आई वरी मिलू था तां सा पंची बची वाली प्रोग्राम में। सो
1: जो लोग हैं मिलते मेरे लिए
0: हाँ जी मोकलानी ना है सिन सलामत सा सलामत अपना इन्ना शला ख्याल रखिएगा
1: तो
0: अल्लाह हाफिज बाय बाय लव यू ऑल।

0: It's 3 p.m. This time, it's Pakistan.
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 नेटवर्क. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो.
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल.
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद.
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी.
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230.
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी. मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं. घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी. राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं. नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली. राब्ते

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जदहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो एं पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिणु कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12 सीन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए,
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252586।
3: जी हा, 2315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

मिल दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती, छाओं में धूप की तरह, जिस्म में रूह की तरह, गुजरे दिमाग से याद तेरी लगातार लहू की तरह, अब खाए जाए ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह, तेरे बिना नहीं घर भी घर, अकेले महसूस ये किया, तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला, खिजा भी आई बर्बाद और दिल का बाग भी रहा ना हरा, तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना, तू मुझ पे देखे इंसान बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला, तू है।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। जीए एफएम 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 PM ताईं। नोट असां वटि लूज़ गोरियूं या कैप्सूल

0: साल गारंटी सां छितू लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
0: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
0: जी हाँ 3615525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

घर का फर्क था कोई मेहमान को न था, थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव जो वीरान को न था।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
0: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जेकर है तवां के मैदे जी तकलीफ है, सीने जी जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326-36-36-879 and 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे, त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा 2 कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

कराची जे हसनाबाद वारे इलाइक़े में हिकु फ्लैट मां 5 लाश हथ SSP ओभर मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त पाड़ेसरनि जे इतलाह बाद पुलिस दरवाज़ो टोड़े फ्लैट में दाख़िल थी ज़ाल मुड़ुस ऐं संदनि 3 ॿारनि जा लाश कढिया। डॉक्टर उमर जो पंजाब में रहंदड़ भाउ लातालकी ज़ाहिर करे रहियो आहे। टिनी ॿारनि जी उमिरि 10 वरनि खां घटि आहे। पोस्टमार्टम बाद मौत जा कारण मालूम थी सघंदा।

सियासी जमायतुनि जे इहतजाज खे ॾिसंदे इस्लामाबाद जे मुख़्तलिफ़ रोडनि ते कंटेनर रखिया विया। श्रीनगर हाईवे ते G9 वेझो कंटेनर लॻाया विया। सरीना चौक, डी चौक ऐं मारगला एवेन्यू भरिसां बि कंटेनर रखिया विया। पंजाब हुकूमत अटक पुल ते लोही शीखनि वारा कंटेनर पहुचाए छॾिया। पंजाब जी सुध समा वारे वज़ीर उज़्मा बुख़ारी जो चवणु आहे त PTI बानीअ जा ॿार लंडन में आराम कनि पिया। हिते ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे ॿारनि खे सियासत लाइ इस्तेमाल कयो पियो वञे। एहतजाजनि ऐं धरणनि सां मुल्क खे रोज़ानो 120 अरब रुपियनि जो नुक़सान थींदो आहे। धरणा हणण पाण खे तकलीफ़ पहुचाइण वारी ॻाल्हि हूंदी। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो त वॾनि ॾुखियाईनि सां मुआशी इस्तेहकाम हासिल कयो, हाणे तरक़ी तरफ़ वधणो आहे, पर धरणा तरक़ीअ जे सफ़र में रुकावट बणजंदा। अहिड़नि हालतुनि में धरणा हणण समुझ खां ॿाहिरि आहे। मुआशी तरक़ी सभिनी जी गॾियल ज़िमेवारी आहे। जमात इस्लामी जी अॼु कराचीअ खां इस्लामाबाद ताईं ट्रेन ज़रिए लांग मार्च जी शुरूआत। हाफिज़ नईम चयो त असांजो एहतजाज रियासत ख़िलाफ़ नाहे ऐं नई भञटा चाहियूं था। हुकूमत वटि लेवी ख़तम करण खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो नाहे। मुतालबो न मञियो वियो त एहतजाजनि हुकूमत किरायो में तब्दील थी वेंदी। हुकूमत पंहिंजी ख़राब हुकमरानी जो बदिलो अवाम वठी रही आहे।

पीपल्स पार्टी तरफा जमात इस्लामी जी लॉन्ग मार्च जी हिमायत सूबाई वजीर नासिर शाह तो बिलावल भुट्टो बे पेट्रो लेवी जी खात्मे जी गाल कई। पीपल्स पार्टी मामलो कौमी असेंबली सेनेट में भी उथारो है। तेल अगन में वाद से अवाम जो तकलीफू वधन थी। जमात इस्लामी से सियासी इख्तिलाफ पांजे जाए पर ट्रेन मार्च की हिमायत क्यूं था। संदन एहतजाज पुरमुन होंद है।

पीटीआई बानीअ जो जेल में तिबी मुआइनो ज़रियुनि मूजिबि बानी जी ब्लड प्रेशर ऐं रत जी चकास कई वई। मेडिकल टीम में शिफ़ा आई अस्पताल ऐं पिम्स अस्पताल जा डॉक्टर्स बि शामिल हुआ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयाउन्नी दुनिया पलोर रवानवी खुदा पोलियो रंज धर माशुम

0: सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
1: मातली आस पास की अवाम अलै खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
7: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
7: जी हा, 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाओ के दो कदम।
0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

टाइप का एस के आर लिख कर मैसेज लिख के देन सेंड कर देना 8881 पर। एस के आर लाजमी लिखें अपने शहर का नाम, अपने जो अपना नाम और जिनके लिए आप मैसेज या कोई बात या कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो जरूर वो भी लिख दिया करें साथ में, और अपने चाहने वाले प्यारों को भी इस प्रोग्राम में शामिल करें। उनको बताएं ये अच्छा सा रिश्ता है जो आपके हमारे दरमियान है, आगाज से बातचीत का जरिया है, अपने ख्यालात इजहार ख्यालात के इजहार का। जी जनाब मैं बार बार इससे थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, रुकती कि मैं बार बार पानी पी रही हूँ, घूट घूट करके मैं पानी जरूर पीती हूँ, तो आप लोग भी पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया करें। अच्छा जी तो एक और अच्छे से ट्रैक की तरफ चलते हैं प्रोग्राम में। तो वरना सब बनिए कि कोमल सिर्फ बातें करती है, बातें नहीं करती, कोमल अच्छे से सॉन्ग प्ले करती है। एक अच्छा सा सॉन्ग में प्ले कर रही हूँ, मोहब्बत सच्चियां फिल्म है, पाकिस्तानी फिल्म का ये अच्छा सा सॉन्ग है जी। बिल्कुल ये एक फिल्म तो मैंने नहीं देखी लेकिन समटाइम सॉन्ग सुना है तो सॉन्ग बहुत अच्छा मुझे लगता है, मैं जीना तेरे नाल, इसकी भी अशार बहुत अच्छे होते हैं। तो जी मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करें, मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करेंगे ये अच्छा सा सॉन्ग। आवाज के रिश्ते में एक और खूबसूरत सी आवाज हमने शामिल कर ली है।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
2: सोना सिर्फ ज़ेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कम्प्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराय तो जवाबित लागू हैं।
3: धर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयोनिवी दुनिया पलोर रवानवी खुदा पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हमशी نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکه چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حقی دا خوبون والوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
4: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10:10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

कराची जे हसनाबाद वारे इलाइक़े में हिकु फ्लेट मां 5 लाश हथ SSP ओभर मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त पाड़ेसरनि जे इतलाउ बाद पुलिस दरवाज़ो टोड़े फ्लेट में दाख़िल थी ज़ाल मुड़ुस ऐं संदन 3 ॿारनि जा लाश कढिया। डॉक्टर उमर जो पंजाब में रहंदड़ भाउ लातालकी ज़ाहिर करे रहियो आहे। 3 ॿारनि जी उमिरि 10 वरनि खां घटि आहे। पोस्टमार्टम बाद मौत जा कारण मालूम थी सघंदा।

सियासी जमातुनि जे एहतजाज खे ॾिसंदे इस्लामाबाद जे मुख़्तलिफ़ रोडनि ते कंटेनर रखिया विया। श्रीनगर हाईवे ते G9 भरिसां कंटेनर रखिया विया। सरीना चौक, डी चौक ऐं मार्गिला एवेन्यू भरिसां बि कंटेनर रखिया विया। पंजाब हुकूमत अटक पुल ते लोही शीखनि वारनि कंटेनर पहुचाए छॾिया। पंजाब जी सिध समा वारे वज़ीर अज़मा बुख़ारी जो चवणो हो त PTI बानीअ जा ॿार लंडन में आराम कनि पिया, हिते KP जे ॿारनि खे सियासत लाइ इस्तेमाल कयो पियो वञे। احتجاجن ऐं धरणनि सां मुल्क खे रोज़ानो 120 अरब रुपियनि जो नुक़सान थींदो। धरणा हणण पाण खे तकलीफ़ पहुचाइण वारी ॻाल्हि हूंदी। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब। मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त वॾनि ॾुखियाइनि सां मुआशी इस्तेहकाम हासिल कयो आहे, हाणे तरक़ी तरफ़ वधणो आहे, पर धरणा तरक़ीअ जे सफ़र में रुकावट बणजंदा। अहिड़ी हालतुनि में धरणा हणण समुझ खां ॿाहिरि आहे। मुआशी तरक़ी सभिनी जी गॾियल ज़िमेवारी आहे। जमात इस्लामी जे अॼु कराचीअ खां इस्लामाबाद ताईं ट्रेन ज़रिए लॉन्ग मार्च जी शुरूआत। हाफिज़ नईम चयो त असांजो एहतजाज रियासत ख़िलाफ़ नाहे ऐं नई भञटा चाहियूं था। हुकूमत वटि लेवी ख़तम करण खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो नाहे। मुतालबो न मञियो वियो त एहतजाज हुकूमत किरायो में तब्दील थी वेंदो। हुकूमत पंहिंजी ख़राब हुकमरानी जो बदिलो आवाम मां वठी रही आहे। पीपल्स पार्टी तरफ़ां जमात इस्लामी जी लॉन्ग मार्च जी हिमायत। सूबाई वज़ीर नासिर शाह चयो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि पेट्रोल लेवी जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि कई। पीपल्स पार्टी मामिलो क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में बि उथारियो। तेल अघनि में वाध सां आवाम जूं तकलीफ़ूं वधनि थियूं। जमात इस्लामी सां सियासी इख़्तिलाफ़ पंहिंजी जाइ ते, पर ट्रेन मार्च जी हिमायत कयूं था। संदन एहतजाज पुरमन हूंदो आहे। कंहिं बि सियासी पार्टीअ खे पुरतशद न बणायो वञे।

वफाकी वज़ीर अता ताड़ चयो आहे त इस्लामाबाद में एहतजाज करण न ॾींदासीं। पीटीआई वारनि खे इस्लामाबाद में किथे बि रस्ता बंदि करण जो हक़ नाहे। जमात इस्लामी खे बि सलाह आहे त इस्लामाबाद तरफ़ न अचनि। कानून सभिनी लाइ बराबर आहे। अवाम जी तकलीफ़ जो अहसास आहे। पेट्रोल अघन में अवाम खे रिलीफ ॾेई रहिया आहियूं। आलमी मार्केट में तेल जा अघ आसमान ते पहुतल आहिनि। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज़ मलिक चयो त ख़ितो इंतिहाई नाज़ुक दौर मां गुज़री रहियो आहे। क़ौमी मफ़ादनि ऐं मुल्की ज़रूरतुनि मूजिब फ़ैसिला कया पिया वञनि।

लाहौर पुलिस पीटीआई बानीअ जी भेण अलीमा खान खे गिरफ़्तार करे वरितो। अलीमा खान जी खानदानी ज़रियुनि मूजिबि अलीमा खान खे लाहौर जे अपर माल इलाइक़े वारे घर मां गिरफ़्तार कयो वियो। अलीमा खान खे गिरफ़्तार करे कोट लखपत जेल मुंतक़िल कयो वियो आहे। पीटीआई बानीअ जो जेल में तिबी मुआयनो। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिला लाइ एमडीके टेस्ट वरती वई। शागिर्द कामयाबी लाइ पुरमेंद की अॼु अपलोड थींदी। सिंध जे 34,265 उमेदवारनि समेत मजमूई तौर ते 136,160 उमेदवारनि टेस्ट में हिसो वरितो। पंजाब में 49,199, खैबर पख्तूनख्वा में 38,841, बलोचिस्तान में 9,923, आज़ाद कश्मीर में 2,761, गिलगित बल्तिस्तान में 1,721, इस्लामाबाद में 1,245 ऐं हिकु आलमी मर्कज़ रियाज में 237 उमेदवारनि टेस्ट ॾिनी। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काणो ऐं सखर में 9 सेंटर्स क़ाइम कया विया हुआ। आईबीएस सखर जो वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ शेख गर्मी सबबि बेहोश थी वियो। संदसि चवण हो त पेपर जी तयारी लाइ सॼी राति जागियुसि, निंड पूरी न हुअण सबबि बेहोश थी वियुसि।

चेहरे बदलते रहे जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरत है इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे वो अफसाने मबनी है जिंदगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब की वही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है उससे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। हम तो भरेंगे दोस्त वक्त की मरहम में शिफा है।

है मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है, झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है, सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान।

एक मिनट रुकी मेरा वेट कर, ओके देन जब भी भाई टेक वन, कहाँ तो ना माफ कीजिएगा, शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप, जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर, गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पर बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल, मैं किस्मत चुकाई, कैसे किस्मत खुल आई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट, Give the boss at the bad, then the monster mad, then made a instinct animalistic. Mad magician, yeah, mathematician, I never take second position, I'm getting ballistic. Cataclysmic, billabulously, click who meticulously. Dogs made a medicinal say, love kiya maine kalam se, such cola maine kasam se. Rang dekho kaise badalte, dikhte hain sab ke, karke kab se, baatein pakki, baatein kacche, I've had enough of it, but I keep going. Got no option but to keep flowing, keep the toxic out of my zone. Just get the thief up me off of my throne, but before I gotta go, let me tell you this. One thing I need you to know, if you ever need a friend, you can call my

0: ये कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिर्फ की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोजानू सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तक है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
1: मातली आसपास की अवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत।

0: ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम। लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, पाद रोड, मातली। राबते लाइ मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: की शक्ल सलमान से नहीं होती। प्लीज मैं इन बुतों को पूछ थोड़ी रही हूँ।
1: पहले पहले अपने हाथ से बनाए हुए बुत से प्यार हो जाता, फिर अपने आप से इश्क हो जाता, फिर अपने आप को आदमी

अगर मोहब्बत ये है कि आप उस इंसान को अपने जहन से बाहर ना निकाल सके, उसके बारे में दिन और रात सोचते रहे, उससे बात करने के बाद यू होल्ड ऑन टू एवरी सिंगल वर्ड, यू आर ऑब्सेस्ड, तो हाँ मुझे है मोहब्बत उससे।

0: राइडर के जरिए 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नजद अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातोक कुमार 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि पाल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ते में सस्ती छित। राब्तो कंदा मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो।
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं बारड़नि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अटंदी आहे।
3: एडिया अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: अपना शहर अपना जी एफ एम 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: ओके जी जनाब, हम लोग शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आवाज के रिश्ते में आप लोगों के साथ इतना ही साथ था तो जी बिल्कुल इसका टाइम हो चुका है 6:53 PM। तो जी बिल्कुल 7 बजे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास 7 मिनट्स बचे हैं। तो जी बिल्कुल ये 7 मिनट्स में आखिर आप लोगों की नजर करना चाहूंगी और आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि हमने स्टार्ट में टॉपिक यही रखा था कि आप लोगों की जो खामी है वही आप लोग की पहचान होती है। अक्सर हम लोग पहचानने में गलती कर देते हैं और आज से आप अपने ऊपर गौर करें, तवज्जो दें कि वाकई ये आपकी अपनी पहचान है, ये आपकी खामी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो जी बिल्कुल जाने से पहले मैं आपको तो ये कहूंगी कि आज आप अपने आप से एक वादा करें, खुद से वादा करें कि मैं जैसी हूँ अल्लाह ने मुझे बेहतरीन बनाया, बल्कि बहुत बेहतर बनाया है और उसे बहुत बेहतर है। दूसरों से मवाजाना बंद कर दें अपनी जात का, खुद से मोहब्बत शुरू करें, क्योंकि आपका पहला सबसे रिश्ता खुद से होता है। जब खुद को आप पहचानेंगे, खुद को समझेंगे तो ही आप आगे कुछ कर सकेंगे। तो जी बहुत सारी दुआओं के साथ अपनी आरजे कोमल को इजाजत दीजिएगा। जाने से पहले एक अच्छा सा ट्रैक आप लोगों के सबके नजर करती जाऊंगी। तो जी आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिनके मैसेजेस में शामिल नहीं कर सके या फरमाइशें दे चुके हैं तो भैया आप लोग मुझसे माजरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है सैटरडे संडे में जरूर आप लोगों की ये जो फरमाइशें पूरी करूंगी, प्रोग्राम में शामिल करूंगी। तब तक के अपनी आरजे कोमल को दुआ में याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा, और आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सैटरडे संडे को शाम 5 बजे से 7 बजे तक। आपका हमारा साथ रहे, किसी नए टॉपिक नए सवाल के साथ कोई डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपने प्यारों को भी प्रोग्राम में शामिल करें, लेकर आए, और जिनकी फरमाइशें दे गई हैं उनसे मैं कहूंगी कि भाई अगर आप कोई भी सॉन्ग डेडिकेट करवाना चाहते हैं ना तो आप मुझे टाइमली इन्फॉर्म कर दिया करें, पहले जब प्रोग्राम शुरू हो तो बता दीजिए इन्फॉर्म किया करें, बताया करें मस्जिद कि भाई हमारा ये जो आप सॉन्ग है प्लीज ये प्ले कर दें, तो मैं जरूर प्ले करूंगी वो सॉन्ग आप लोगों के लिए। तो जिसकी भी जो फरमाइश रहेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे संडे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी शाम 5 से 6-7 बजे तक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा अपनी आरजे कोमल को। जाने से पहले आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ट्रैक प्ले करूं फैर अली पाका की आवाज में, तू क्या जाने, जो बिल्कुल तू क्या जाने मैंने प्ले कर दिया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा अपनी आरजे कोमल को। जी फिर मेरी सकर आवाज के रिश्ते में लास्ट ट्रैक आज का मैंने प्ले कर दिया है, तो अल्लाह

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: अए अबाड़े जोड़न जे सूरत सफा मारे छजुआ,
3: अदात ने जो इलाज छो नथो कराई,
2: इलाज कराए कराए थक जी पियो आ।
3: अदा हिन सूरत जो इलाज खात्मा दर्द दवा सा मुमकिन आहे।
4: मुमकिन आहे
3: जी हाँ, खात्मा दर्द एक एड़ी दवा जेका सूर खा दे निजात। सूर चाहे जोड़न जो हुजे, पठन जो हुजे, चेल जो हुजे या घिंटिया जो, कुन रग जो हुजे या वरी जिस्म जे कहें भी नंढे वडे सूर जे लाए आजमूदा दवा आहे। सतन दीहन जी दवा सिर्फ 450 रुपयन में। खात्मा दर्द मिलन जो हंध बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामो, अल नूर दवा खाना रोहड़ी राप्ती।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: बाद पुलिस दरवाजो टोड़े फ्लैट में दाखिल थी तो ज़ाल मुड़ से चंदन टे बार लाश मिलिया. डॉक्टर उमर जो पंजाब में रहंदड़ भाव लातालकी जाहिर कर रो है. टिन्हीं बार की उम्र 10 वर्ण का घट है. पोस्टमार्टम बाद मौत जा कारण मालूम थी सकंदा. सियासी जमातन के एहतजाज के ऐसंदे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रोडन से कंटेनर रखा वह. श्रीनगर हाईवे से G9 वेझो कंटेनर लगाया वह. श्रीना चौक डी चौक ए मार्गला एवेन्यू भरसा भी कंटेनर रखा वह. पंजाब हुकूमत अटक पुल से लोही शीखन वारा कंटेनर पहुंचाए छाया. पंजाब की सद समावर वजीर उजमा बुखारी चयो तो पीटीआई बानी जा बार लंडन में आराम कन पाया. इतने खैबर पख्तूनख्वा के बार सियासत ला इस्तेमाल किया पे वे. एहतजाजन ए धरणन से मुल्क के रोजानो 120 अरब रुपये जो नुकसान थी. धरना हणन पान के तकलीफ पहुंचाने वाली गाल हुंदी. नाणे वाले वजीर मोहम्मद औरंगजेब जो इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब. मोहम्मद औरंगजेब चयो तो वडन दुखियाइन से मुआशी इस्तेहकाम हासिल कयो है. हाँ तरक्की तरफ वधणो है पर धरना तरक्की के सफर में रुकावट बन जदा. अड़ी हालतुन में धरना हणन समझ का बाहर है.

0: इस्लामाबाद मार्च हम अपनी जात के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। हुकूमत ने यह तय किया हुआ है कि हम अपनी नाअहली, अपनी करप्शन, अपनी लूटमार, अपनी ब्रेड गवर्नेंस का बदला आवाम से लेंगे। हत्या टैक्स, गुंडा टैक्स, जग्गा टैक्स जो लेवी की सूरत में है, ये पेट्रोल की हर लीटर पर वसूल किया जा रहा है। लेवी का भत्ता अगर रहेगा तो फिर एहतजाज भी बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा कि फिर ऐसा ना हो कि ये हुकूमत गिराव तहरीक में तब्दील हो जाए।
1: जमात इस्लामी जी अज कराची का इस्लामाबाद ताई ट्रेन जरिए लॉन्ग मार्च की शुरुआत। हाफिज रहीम चयो तो इसां जो एहतजाज रियासत खिलाफ न नई भज ड्राह चाहूं था। हुकूमत वट लेवी खत्म करण का सवाए बो को भी रस्तो ना है। मुतालबो न मंजो वो तो एहतजाज हुकूमत किरायो में तब्दील थी वेंदो। हुकूमत पांजी खराब हुकुमरानी जो बदलो अवाम वठी रही है।

पीपुल्स पार्टी तरफ़ा जमात इस्लामी की लॉन्ग मार्च की हिमायत सूबाई वजीर नासिर शाह जो चवण हो तो बिलावल भुट्टो भी पेट्रोल लेवी की खात्मे की गाल कई। पीपी मामलो कौमी असेंबली सेनेट में भी उथारो है। तेल अगन में वाद से आवाम जो तकलीफू वधन थी। जमात इस्लामी से सियासी इख्तिलाफ़ पांजी जाए थे पर ट्रेन मार्च की हिमायत क्यूं था। संदन एहतजाज पुर अमन हों कें भी सियासी पार्टी के तशद पुरतशद न बढ़ाए वे। वफाकी वजीर अता तारल चयो तो इस्लामाबाद में एहतजाज कर न डींदी। पीटीआई वालन के इस्लामाबाद में किथे भी रस्ता बंद करण की इजाजत न है। जमात इस्लामी के भी सलाह है तो इस्लामाबाद तरफ न अचन। कानून सभी लाइ बराबर है।

पीटीआई बानी जो जेल में तिबी मुआइनो ज़रियन मूजिब बानी जी ब्लड प्रेशर ए रत की चकास की हुई। मेडिकल टीम में शिफा आई अस्पताल ए पिम्स अस्पताल जा डॉक्टर्स भी शामिल हुआ।

मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में दाखिला ला एम डी के टेस्ट वरती वही शागिर्द कामयाबी लाइ पुरोमें की अज अपलोड थी सिंध के 34,265 उम्मीदवार समेत मजमूई तौर से 1,38,160 उम्मीदवार टेस्ट में हिस्सों वरतो पंजाब में 49,199 खैबर पख्तूनख्वा में 38,841 बलोचिस्तान में 9,923 आजाद कश्मीर में 2,761 गिलगित बल्तिस्तान में 1,721 इस्लामाबाद में 1,245 एक आलमी मरकज रियाज में 237 उम्मीदवार टेस्ट डिनी कराची हैदराबाद जामशोरो मीरपुर खास शहीद बेनजीराबाद लाड़कानो ए सखर में भी 9 सेंटर्स कायम आईबीएस सखर जो वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ शेख गर्मी सबब बेहोश थी वो संदस चवण हो तो पेपर की तैयारी लाइ सारी रात जागीस निंड पूरी न होने सबब बेहोश थी वैसि।

0: हुकूमत अॼु खां बिजली ख़रीद न कंदी। बिजली ठाहींदड़ ऐं वाफ़ेदार ख़रीद ऐं विकिरो कंदा। हुकूमत खे केर बि बिजली न विकिणी सघंदो। तवानाई वारे वज़ीर अवैस लगारी चयो त नओं निज़ाम पहिरियों सनती ऐं बिजली जे वॾनि वाफ़ेदारनि ते लागू थींदो। पावर डिवीज़न बिजली नीलामी जे लाइ प्रपोज़ल जारी करे छॾियो। ईंदड़ 5 सालनि ताईं बिजली जी नीलामी कई वेंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ,
3: मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली,
2: आवाज की डोर से बंधा हुआ।
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा बकत

0: तीका सईद
1: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो नथी अण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
0: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086316
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 0300-2962-435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
0: 90.4 पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण
1: मैनेजर यूनस ते राब्तो कटी 2556
0: GFM रेडियो नेटवर्क

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: कलमा पढ़ो ते हिक भेरा बीहर पढ़न बियाए बल बल पढ़न दे यार सजर दी हुंदी सा कु जुदाई मुस्लिम विचों का फरती वन ए केड़ी हुंदी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीवे एरी करे न अंधाई
1: अदा मजबूर आशिक के अंजा यार दोस्त रोकिन था तू पहले महबूब सम्मेलन न वन तुझा दुश्मन टोखे होते तुझा वेरी मारे वजंदा अर्ज करे पियो मां मौत खान थो डजा बराल महबूब जो दीदार जरूर करनो पवंदो मां त घणो पंहिंजे पाण खे रोकियां पर छा करियां मुंहिंजी दिलि नथी रहे।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: धर माशुम और कोटी वर कोटी कदमुना दया उन्नी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी, नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानुता द पोलियो द मखनिवी द्व सास्की वरकवल महेरवई, जकच हुम द सास्की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजर मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ, एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435, एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
1: जी हा, 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: कलमा पढ़ो ते हिक भेरा दीहर पढ़न बियाए बल बल पढ़न दे यार सजर दी हूं दिसा को जुदाई मुस्लिम विचों काफर थीवन ए केड़ी हुंदी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीवे एरी करे न अंधाई
1: अदा मजबूर आशिक के अंजा यार दोस्त रोकिन था तू पहले मैं वो सम्मेलन न वन तुझा दुश्मन तोखे होते तुझा वेरी मारे वजंदा अर्ज करे पियो मां मौत खाना थो डजा बराल महबूब जो दीदार जरूर करनो पवंदो मां त घणो पंहिंजे पाण खे रोकियां पर छा करियां मुंहिंजी दिलि नथी रहे।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सघंदा सिंध में पौणा 41 लख न्याणियूं स्कूलन खां ॿाहिर बहराड़ीअ में औरतुनि जी हालत खराब आहे हुकूमत रिपोर्ट पेश करे छॾी सिंध सरकार पारां कणक जो इमदादी अघ मुक़ररु करण वारो फ़ैसिलो 2 हफ़्ता मुलतवी कणक पोखींदड़ 25 एकड़नि ताईं जे मालिक 5.5 लख आबादगारनि ऐं हारनि लाइ DAP भाण जे मद में 4,000 रुपया फ़ी एकड़ सब्सिडी जो ऐलान सिंध जे फ्लोर मिलनि खे 1 अक्टूबर खां कणक फराहमीअ जो फ़ैसिलो अटो सस्तो करण जो हुकुम सिंध सरकार पारां 10 सालनि खां पोइ ॻोढ़ाणू डेम हानिकार करार छोड़ बंद नए डेम जूं तयारियूं मंशात खे कीअं रोकजे घरू खाते पारां IG सिंध खे बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राब्ते जो हुकुम सिंध में हथियारनि जा नवां लाइसेंस जारी करण ते पाबंदी नोटिफिकेशन जारी ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा सिंध में हारनि जा हक़ जबरी पोरे ऐं तशदुद जा अंग अखर सिंध हुकूमत सनफ़ी बराबरीअ बाबति पहिरीं सनफ़ी बराबरी रिपोर्ट पधरी करे छॾी काला इंसानी हक़नि वारे ख़ासि मामिल राजवीर सिंह सोढो वज़ीर आला सां मुलाक़ात में रिपोर्ट पेश कई रिपोर्ट मूजिबि साल 2023 में सिंध जी आबादी 5,56,90,000 ताईं पहुची वई जेका 2.57% सालियानी शरह सां वधी रही आहे हर 100 औरतुनि जे मुक़ाबले में मर्दनि जो अंग 108.76 आहे रिपोर्ट में सिहत जे शुबे में लगातार अघबराई पेश कई वई आहे जिते सरकारी फंडनि जी विच साल 2023-2024 जे 214.5 अरब मां वधी साल 2024-2025 में 267.54 अरब रुपया थी वई आहे वियम दौरान मायरुनि जी फोतगीअ जी शरह 314 मां नुमाया तौर ते घटिजी हर लख ज़िंदा जबंदड़ ॿारनि ते 224 ताईं अची वई आहे जॾहिं त नवनि ॼावल ॿारनि जी फोतगीअ जी शरह हर 1,000 ज़िंदा जबंदड़ ॿारनि ते 24 हुई उन्हनि अघ भराइनि बावजूद तालीम जी शोभो सूबे जी सुभ खां वॾो चैलेंज मां हिकु आहे रिपोर्ट मूजिबि मर्दनि में ख़्वांदगीअ जी शरह 68 ऐं औरतुनि में 47% आहे जॾहिं त बहराड़ी में औरतुनि में उहा शरह गणती जोगी हद ताईं घटि यानी 27.57 आहे 5 खां 16 सालनि जे उमिरि जूं 40,80,000 खां वधीक छोकिरियूं स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि जेका ॻाल्हि फौरी ऐं लगातार कदमनि जी ज़रूरत ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे उन मौके ते वज़ीर आला मुराद अली शाह चयो त सिंध हुकूमत ख़ासि सीड़पकारी इदारती सुधारनि ऐं सनफ़ी ज़रूरतुनि खे नज़र में रखंदे तरक़ियाती मनसूबाबंदी ज़रिए उन्हनि रुकावटुनि खे ख़तम करण जे लाइ पुरज़म आहे हुन चयो त असां अहिड़ी सिंध अॾणु चाहियूं था जिथे हर औरत ऐं छोकिरीअ खे पढ़ण कमु करण अॻवाणी करण ऐं समाज में पंहिंजो हिसो विझण जी बराबरि मौकिया मिलनि सिंध सरकार पारां कणक जी इमदादी अघ मुक़ररु करण वारो फ़ैसिलो 2 हफ़्ता मुलतवी करे छॾियो आहे कणक पोखींदड़ 25 एकड़नि ताईं जे मालिकनि 5.5 लख आबादगारनि ऐं हारे लाइ DAP भाण जे मद में 4,000 रुपया फ़ी एकड़ सब्सिडी जो ऐलान कयो वियो आहे मार्कमी खुराक खाते खे कणक विकिरो कंदड़ 56,471 आबादगारनि खे 2,000 रुपया वाधू 6,000 रुपया ॾियण जो फ़ैसिलो कणक सब्सिडी 14.9 खां वधी 16 अरब ताईं पहुची वेंदी उन ॾसमी काल वज़ीर आला मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सूबाई काबीना जे इजलास में चयो वियो त आबादगारनि जे लाइ ऐलानियल कणक सब्सिडी पैकेज मां सिंध जे लॻभॻि 5.5 लख कणक जे आबादगारनि खे फ़ाइदो पहुचंदो वॾे वज़ीर सिंध हारे सपोर्ट प्रोग्राम तहत 25 एकड़नि ताईं ज़मीन जे मालिक रखंदड़ कणक जे आबादगारनि जी नए सिर रजिस्ट्रेशन जी हिदायत कई अॻु में फ़ाइदो वठंदड़नि जे रेवन्यू खाते ज़रिए ॿीहर तस्दीक कई वेंदी काबीना खे आगाही ॾिनी वई त मटियारी ऐं सखर ज़िलनि जे टिन ॾींहनि मटियारी ज़िले जे देह मटियारी ऐं पलेजाणी ऐं सखर जे देह बागड़जीअ में ब्लॉक चेन ई सिस्टम शुरू कयो वेंदो बोर्ड ऑफ रेवन्यू पारां IBA यूनिवर्सिटी सखर जे तावन सां ई ट्रांसफर सिस्टम तयार कयो वियो आहे सिंध काबीना नए स्पोर्ट पॉलिसी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी काबीना इजलास में सिंध जी बासलाइत रांदीगरनि जी ॻोल्हा ऐं हिमत अफ़ज़ाई जे लाइ क़दम खणण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे सिंध में स्पोर्ट्स हॉस्टल्स ऐं अकेडमीज़ क़ाइमु करण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे सिंध सरकार थर जे कोयले जी खुटाई दौरान निकरंदड़ पाणीअ जे ज़खीरनि जे लाइ क़ाइम कयल ॻोढ़ाणे डेम खे 10 सालनि खां पोइ मक़ामी आबादीअ जे लाइ हानिकार करार ॾींदे पाणी छोड़ न करण जो ऐलान करे छॾियो उन हवाले सां सिंध जे माहौलियाती खाते जे पार्लियामानी सेक्रेटरी हसन अली शाह चयो त थर में कोयले जी खुटाई जे दौरान निकरंदड़ ज़हरीलो पाणी जे छोड़ जे लाइ ठाहियल ॻोढ़ाणे डेम ख़िलाफ़ मक़ामी रहवासियुनि जी दांत नज़र में रखंदे सिंध सरकार उते पाणी छोड़ बंदि करे छॾियो आहे कोयले जी खुटाई दौरान निकरंदड़ पाणी छोड़ करण लाइ मुतबादिल हंधु ॻोल्हियो
पियो वञे हुन चयो त पाणी जे ज़खीरनि जे लाइ ॻोढ़ाणे डेम जे साम्हूं जिते माण्हुनि जी अच वञ या ज़मीनूं न आहिनि उते ॿियो डेम ठाहियो पियो वञे। हुन चयो त ॻोठाइण जो मौक़ुफ़ सही हो, उते जे आस पास जी ज़ेर ज़मीन पाणीअ खे बि कोयले जी ज़हरीले पाणी ज़हरीलो करे छॾियो हो। सिंध सरकार 1 अक्टूबर खां परगणे जे फ्लोर मिलनि खे सरकारी कणक जारी करण जो फैसलो करे छॾियो आहे। काल वज़ीर आला हाउस मंथल जे रात्मी खुराक ते आगाह कयो त सूबे में 209 टन कणक ज़ब्त

ॿुधायो वियो त ख़ुराकात जे अॻु में थियल कणक जा ॿ पॉइंट 855 अरब रुपया अदा करे छॾिया। वॾे वज़ीर ख़ुराक खाते खे हिदायत कई त पहिरीं अक्टूबर खां फ्लोर मिलुनि खे कणक जारी करण जे इंतज़ामनि खे हतमी शिकिल ॾिनी वञे। हुननि चयो त सरकारी कणक जो फ़ाइदो सार्फिनि ताईं अटे जी घटियल क़ीमतुनि जी सूरत में पहुचणु घुर्जे। ख़ुराक खाते इजलास खे आगाह कयो त सिंध पास्को खां 190,000 मीट्रिक टन ऐं 223,450 मीट्रिक टन जे विच में कणक ख़रीद करण जो मनसूबो रखे थी। उन लाइ ट्रांसपोर्टेशन जी ट्रेडर अॻिमी ई जारी कयो वियो आहे, जॾहिं त ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP 3,00,000 टन परडे॒ही कणक जी दरामद लाइ टेंडर जारी कयो आहे। उहो टेंडर हिन हफ़्ते खुलण जो इम्कान आहे। इजलास खे ख़िताब कंदे मुराद अली शाह वरजायो त असां यकीनी बणाईंदासीं त सॼी सिंध में कणक जी घुरबल स्टॉक मौजूद हुजे ऐं सार्फिनि खे सस्ती क़ीमत ते अटो मिले। घरू खाते बाबति स्टेडिंग कामेटी पारां मंशियात जे रोकथाम जे लाइ IG सिंध खे बलूचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राब्तो करे असराइती हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत कई वई आहे। IG सिंध पारां सिंध में ॾोहनि जे वारदातुनि में घटताई वारी रिपोर्ट कामेटीअ हवाले कई। मोबाइल फोन फुर वारनि वारदातुनि में इज़ाफ़े जो एतिराफ़ कयो वियो। काल PP MPA फरियाल तालपुर जी सदारत हेठि थियल इजलास में सूबे में अमन अमान जी सूरत हाल, मंशियात विकरे जे इल्ज़ामनि हेठि आयल अनमोल उर्फ़ पिंके जे केसनि ऐं ॿियनि मामलनि ते तफ़सीली गौर कयो वियो। पुलिस इख़्तियारनि पारां स्टेडिंग कमेटी में पेश कयल रिपोर्ट में चयो वियो आहे त बलूचिस्तान मां मंशियात जूं फैक्ट्रियूं आहिनि, उतां मंशियात सिंध ॾांहुं अचे थी। स्टेडिंग कमेटी IG सिंध खे हिदायत कई त बलूचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राब्तो करे मंशियात जी स्मगलिंग रोकण जे लाइ असराइती पॉलिसी ठाही वञे। इजलास में IG सिंध जावेद आलम ओढो ब्रीफिंग ॾींदे चयो आहे त सिंध में मजमूई तौर ते अमन अमान जी सूरतहाल बहितर थी आहे। पुलिस इख़्तियारनि इजलास खे ॿुधायो त मंशियात विकिरो कंदड़ 9,000 खां वधीक जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, जॾहिं त ॿ ॾींहं अॻु ड्रग सप्लायर बि मारिजी वियो आहे। घरू खाते सूबे में हथियारनि जा नवां लाइसेंस जारी करण ते पाबंदी लॻाए छॾी। घरू वज़ीर जे तर्जुमान मूजिबि नवनि हथियारनि जी डीलरशिप जा लाइसेंस जारी करण ते बि पाबंदी हूंदी। तर्जुमान

0: सिंध में हारिन के हकन जबरी पोरे औरतन खिलाफ तशद्दुद बाबत अहम रिपोर्ट सामू आई है जैमें सिंध के मुख्तलिफ इलाकन में हारिन से थन्दड़ मुबैना ज्यादतिन जबरी पोरे बुनियादी हकन की खोट से गणती जाहिर कई वही है। हारी वेलफेयर एसोसिएशन पारा हैदराबाद क्लब में सिंध में हारिन के हकन बाबत साल 2025 के सालियानी दही रिपोर्ट जारी कई वही। रिपोर्ट की पधराई तकरीब के खिताब कदे हारी वेलफेयर एसोसिएशन के मरकजी सदर सिंध में करोड़े हारिन जहा आइनी कानूनी इंसानी हक मुतासर थी रहा उन्होंने मुतालबो किया हारिन के लिए सूबाई कौमी असेंबली तोड़े सेनेट में खसूसी नुमाइंदगी दिनी वे ज़रई ज़मीन के निज़ाम में सुधार आंदा वन बेज़मीन हारिन के कानूनी तौर रजिस्टर्ड कर हारी कार्ड जारी कया वन। रिपोर्ट में उहो भी मुतालबो किया तो बेज़मीन हारिन हरियाणियों के सरकारी ज़मीन रिहाइश लाइ प्लाट बुनियादी सहूलतू फराहम कई वन जडे तो ज़रई मजदूरन के सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन कर हुकूमत पारा मुकर कल घट में घट उजरत दिनी वे। इंसानी हक के अगवाण पिण हारिन के बुनियादी हकन बाबत खदशन जो इजहार कदे हरियाणियों के विरसे में मिलंदड़ जमीन के रेवन्यू रिकॉर्ड में मुंतकली बिन कानूनी मामलों से भी ध्यान दियण जरूरी है। रिपोर्ट मूजिब 2025 दौरान सिंध में औरतुन छोकरियों खिलाफ तशद्दुद जा 772 केस रिपोर्ट थे। उन्हें 218 कत्ल 138 अगवा 124 खुदकुशियों 104 रेप या जिन्सी ज्यादती 24 घरेलू तशद्दुद 72 गैरत के नाले से कत्ल 35 जबरी शादियों जहा केस शामिल हैं। जिले लिहाज का खैरपुर में 75 लाड़काने में 55 दातू में 45 सखर में 40 घोटके में 35 वाकया रिपोर्ट थे। रिपोर्ट में 2025 दौरान कबायली फिरकेवारानी तशद्दुद के वाकन में 337 मानू मुतासर थे जिन में 136 मारजी व्या 201 जख्मी थे। रिपोर्ट मूजिब खैरपुर जिलो कबायली तकरारन का वधिक मुतासर इलाको मां रहो जडे त अड़न वाकन सबब बहराड़ी की मईशत ज़रात हारिन के रोजगार से पिण असर पियो। रिपोर्ट मुताबिक 2018 का 2025 तीन ज़रई शोबे में 10,053 हारिन मजदूरन के जबरी पोरे में आजाद कराया वो उन्हें मां उमरकोट में 4,088 मीरपुर खास में 1,764 सांगड़ में 1,576 केस रिपोर्ट थे। रिपोर्ट में 2021 का पोए जबरी पोरे की रिपोर्ट थल केसन में घटाई जरूर आई है पर हारिन के हकन तहफुज कानूनी सुजाणप बाबत मसला अजा भी मौजूद आन। ये रिपोर्ट एक अहम सवाल जरूर उथारे थी तो सिंध की ज़रई मईशत में बुनियादी किरदार अदा कदड़ हारिन के संदन कानूनी मुआशी इंसानी हक कदे मुकम्मल तौर से मिलंदा। यो हिन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दिना इजाजत अल्लाह ने कहबान।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: आज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200
0: मातली आई आसपास जी आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अलीशेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03132525786
1: जी हा 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा बेडी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002900।

0: ਮੱਕਾਣੀ ਚੌਕ ਮਾਤਲੀ ਤੇ ਔਰਤਨ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਿਆਣੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੀਕਾ ਸਈਦ
1: ਰੋਜ਼ਾਨੂ ਸੁਬੁਹ ਜੋ 10 ਖਾਂ ਰਾਤ ਜੋ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕੰਦੀ
0: ਔਲਾਦ ਜੋ ਨ ਥੀਣ औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
5: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786
5: जी हा 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़

0: 8631 63.
1: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: It's 9 PM. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
4: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान बेण।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सघंदा। सिंध में पौणा 41 लख न्याणियूं स्कूलन खां ॿाहिरि। बहराड़ीअ में औरतुनि जी हालत खराब आहे। हुकूमत रिपोर्ट पेश करे छॾी। सिंध सरकार पारां कणक जो इमदादी अघु मुक़ररु करण वारो फ़ैसिलो 2 हफ़्ता मुलतवी। कणक पोखींदड़ 25 एकड़नि ताईं जे मालिक 5.5 लख आबादगारनि ऐं हारियुनि लाइ DAP भाण जे मद में 4,000 रुपया फ़ी एकड़ सब्सिडी जो ऐलान। सिंध जे फ्लोर मिलनि खे 1 अक्टूबर खां कणक फराहमीअ जो फ़ैसिलो। अटो सस्तो करण जो हुकुम। सिंध सरकार पारां 10 सालनि खां पोइ ॻोढ़ाणू डेम हानिकार करार। छोड़ बंद, नए डेम जूं तयारियूं। मंशियात खे कीअं रोकजे? घरू खाते पारां IG सिंध खे बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राब्ते जो हुकुम। सिंध में हथियारनि जा नवां लाइसेंस जारी करण ते पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध में हारियुनि जा हक़, जबरी पोरी ऐं तशदुद जा अंग अखर। सिंध हुकूमत सनफ़ी बराबरीअ बाबति पहिरीं सनफ़ी बराबरी रिपोर्ट पधरी करे छॾी। काल इंसानी हक़नि वारे ख़ासि मामिल राजवीर सिंह सोढो वज़ीर आला सां मुलाक़ात में रिपोर्ट पेश कई। रिपोर्ट मूजिबि साल 2023 में सिंध जी आबादी 5,56,90,000 ताईं पहुची वई, जेका 2.57% सालियानी शरह सां वधी रही आहे। हर 100 औरतुनि जे मुक़ाबले में मर्दनि जो अंग 108.74 आहे। रिपोर्ट में सिहत जे शुबे में लगातार अघबराई पेश कई वई आहे, जिते सरकारी फंडनि जी विर्च साल 2023-2024 जे 214.5 अरब मां वधी साल 2024-2025 में 267.54 अरब रुपया थी वई आहे। वियम दौरान मायरुनि जी फोतगीअ जी शरह 314 मां नुमाया तौर ते घटिजी हर लख ज़िंदा ॼमंदड़ ॿारनि ते 224 ताईं अची वई आहे, जॾहिं त नवनि ॼावल ॿारनि जी फोतगीअ जी शरह हर 1,000 ज़िंदा ॼमंदड़ ॿारनि ते 24 हुई। उन्हनि अघबराइनि बावजूद तालीम जे शोबो सूबे जी सभ खां वॾो चैलेंज मां हिकु आहे। रिपोर्ट मूजिबि मर्दनि में ख़्वांदगीअ जी शरह 68 ऐं औरतुनि में 47% आहे, जॾहिं त बहराड़ी में औरतुनि में उहा शरह गणती जोगी हद ताईं घटि, यानी 27.57 आहे। 5 खां 16 सालनि जे उमिरि जूं 40,80,000 खां वधीक छोकिरियूं स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि, जेका ॻाल्हि फौरी ऐं लॻातार क़दमनि जी ज़रूरत ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे। उन मौक़े ते वज़ीर आला मुराद अली शाह चयो त सिंध हुकूमत ख़ासि सीड़पकारी इदारती सुधारनि ऐं सनफ़ी ज़रूरतुनि खे नज़र में रखंदे तरक़ियाती मनसूबाबंदी ज़रिए उन्हनि रुकावटुनि खे ख़तम करण जे लाइ पुरज़म आहे। हुन चयो त असां अहिड़ी सिंध अॾणु चाहियूं था जिथे हर औरत ऐं छोकिरीअ खे पढ़ण, कमु करण, अॻवाणी करण ऐं समाज में पंहिंजो हिसो विझण जी बराबरि मौक़िया मिलनि। सिंध सरकार पारां कणक जी इमदादी अघु मुक़ररु करण वारो फ़ैसिलो 2 हफ़्ता मुलतवी करे छॾियो आहे। कणक पोखींदड़ 25 एकड़नि ताईं जे मालिकनि 5.5 लख आबादगारनि ऐं हारियुनि लाइ DAP भाण जे मद में 4,000 रुपया फ़ी एकड़ सब्सिडी जो ऐलान कयो वियो आहे। मार्च में खुराक खाते खे कणक विकिरो कंदड़ 56,471 आबादगारनि खे 2,000 रुपया वाधू 6,000 रुपया ॾियण जो फ़ैसिलो। कणक सब्सिडी 14.9 खां वधी 16 अरब ताईं पहुची वेंदी। उन ॾस में काल वज़ीर आला मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सूबाई काबीना जे इजलास में चयो वियो त आबादगारनि जे लाइ ऐलानियल कणक सब्सिडी पैकेज मां सिंध जे लॻभॻि 5.5 लख कणक जे आबादगारनि खे फ़ाइदो पहुचंदो। वॾे वज़ीर सिंधारी सपोर्ट प्रोग्राम तहत 25 एकड़नि ताईं ज़मीन जे मालिक रखंदड़ कणक जे आबादगारनि जी नए सिर रजिस्ट्रेशन जी हिदायत कई। अॻु में फ़ाइदो वठंदड़नि जे रेवन्यू खाते ज़रिए ॿीहर तस्दीक कई वेंदी। सिंध काबीना खे आगाही ॾिनी वई त मटियारी ऐं सखर ज़िलनि जे 3 देहनि, मटियारी ज़िले जे देह मटियारी ऐं पलेजाणी ऐं सखर जे देह बागड़जीअ में ब्लॉक चेन ई सिस्टम शुरू कयो वेंदो। बोर्ड ऑफ रेवन्यू पारां IBA यूनिवर्सिटी सखर जे तावन सां ई ट्रांसफर सिस्टम तयार कयो वियो आहे। सिंध काबीना नए स्पोर्ट्स पॉलिसी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। काबीना इजलास में सिंध जी बासलाहियत रांदीगरनि जी ॻोल्हा ऐं हिमत अफ़ज़ाई जे लाइ क़दम खणण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। सिंध में स्पोर्ट्स हॉस्टल्स ऐं अकेडमीज़ क़ाइम करण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सिंध सरकार थर जे कोयले जी खुटाई दौरान निकरंदड़ पाणीअ जे ज़खीरनि जे लाइ क़ाइमु कयल ॻोढ़ाणे डेम खे 10 सालनि खां पोइ मक़ामी आबादीअ जे लाइ हानिकार करार ॾींदे पाणी छोड़ न करण जो ऐलान करे छॾियो। उन हवाले सां सिंध जे माहौलियाती खाते जे पार्लियामानी सेक्रेटरी हसन अली शाह चयो त थर में कोयले जी खोटाई जे दौरान निकरंदड़ ज़हरीलो पाणी जे छोड़ जे लाइ ठाहियल ॻोढ़ाणे डेम ख़िलाफ़ मक़ामी रहवासियुनि जे दाह नज़र में रखंदे सिंध सरकार उते पाणी छोड़ बंदि करे छॾियो आहे। कोयले जी खोटाई दौरान निकरंदड़ पाणी छोड़ करण लाइ मुतबादिल हंधु ॻोल्हियो
पियो वञे हुन चयो त पाणी जे ज़खीरनि जे लाइ ॻोढ़ाणे डेम जे साम्हूं जिते माण्हुनि जी अच वञ या ज़मीनूं न आहिनि उते ॿियो डेम ठाहियो पियो वञे। हुन चयो त ॻोठण जो मौक़ुफ़ सही हो, उते जे आस पास जी ज़ेर ज़मीन पाणीअ खे बि कोयले जी ज़हरीले पाणी ज़हरीलो करे छॾियो हो। सिंध सरकार 1 अक्टूबर खां परगणे जे फ्लोर मिलनि खे सरकारी कणक जारी करण जो फैसलो करे छॾियो आहे। काल वज़ीर आला हाउस मिसल जी रासमी खुराकाते आगाह कयो त सूबे में 226.918 टन कणक ज़ब्त कई वई आहे। उन्हीअ मां 57.122 टन फ्लोर मिलनि में मौजूद आहे, जॾहिं त 179.796 टन वापारियुनि ऐं ज़खीरा अंदोज़ कंदड़नि वटि हथाई आहे, जॾहिं त 25.350 टन कणक ते केस हली रहियो आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त ख़ुराक खाते अॻ में खयल कणक जा 2.855 अरब रुपया अदा करे छॾिया। वॾे वज़ीर ख़ुराक खाते खे हिदायत कई त 1 अक्टूबर खां फ्लोर मिलनि खे कणक जारी करण जे इंतज़ामनि खे हतमी शिकिल ॾिनी वञे। हुननि चयो त सरकारी कणक जो फ़ाइदो सार्फिनि ताईं अटे जी घटियल क़ीमतुनि जी सूरत में पहुचणु घुर्जे। ख़ुराक खाते इजलास खे आगाह कयो त सिंध पास्को खां 1,90,000 मैट्रिक टन ऐं 2,23,450 मैट्रिक टन जे विच में कणक ख़रीद करण जो मनसूबो रखे थी। उन लाइ ट्रांसपोर्टेशन जी ट्रेडर अॻिमें ई जारी कयो वियो आहे, जॾहिं त ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP 3,00,000 टन परॾेही कणक जी दरामद लाइ टेंडर जारी कयो आहे। उहो टेंडर हिन हफ़्ते खुलण जो इम्कान आहे। इजलास खे ख़िताब कंदे मुराद अली शाह वरजायो त असां यकीनी बणाईंदासीं त सॼी सिंध में कणक जी घुरबल स्टॉक मौजूद हुजे ऐं सार्फिन खे सस्ती क़ीमत ते अटो मिले। घरू खाते बाबति स्टेडिंग कमेटी पारां मंशियात जे रोकथाम जे लाइ IG सिंध खे बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राब्तो करे असराइती हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत कई वई आहे। IG सिंध पारां सिंध में ॾोहनि जे वारदातुनि में घटताई वारी रिपोर्ट कमेटीअ हवाले कई। मोबाइल फोन फुर वारनि वारदातुनि में इज़ाफ़े जो एतिराफ़ कयो वियो। काल PP MPA फरियाल तालपुर जी सदारत हेठि थियल इजलास में सूबे में अमन अमान जी सूरत हाल, मंशियात विकरे जे इल्ज़ामनि हेठि आयल अनमोल उर्फ़ पिंके जे केसनि ऐं ॿियनि मामलनि ते तफ़सीली गौर कयो वियो। पुलिस इख़्तियारनि पारां स्टेडिंग कमेटी में पेश कयल रिपोर्ट में चयो वियो आहे त बलोचिस्तान मां मंशियात जूं फैक्ट्रियूं आहिनि, उतां मंशियात सिंध ॾांहुं अचे थी। स्टेडिंग कमेटी IG सिंध खे हिदायत कई त बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राब्तो करे मंशियात जी स्मगलिंग रोकण जे लाइ असराइती पॉलिसी ठाही वञे। इजलास में IG सिंध जावेद आलम ओढो ब्रीफिंग ॾींदे चयो आहे त सिंध में मजमूई तौर ते अमन अमान जी सूरतहाल बहितर थी आहे। पुलिस इख़्तियारनि इजलास खे ॿुधायो त मंशियात विकिरो कंदड़ 9,000 खां वधीक जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, जॾहिं त ॿ ॾींहं अॻु ड्रग सप्लायर बि मारिजी वियो आहे। घरू खाते सूबे में हथियारनि जा नवां लाइसेंस जारी करण ते पाबंदी लॻाए छॾी। घरू वज़ीर जे तर्जुमान मूजिब नवनि हथियारनि जी डीलरशिप जा लाइसेंस जारी करण ते बि पाबंदी हूंदी। तर्जुमान मूजिब पाबंदी ते फौरी तौर अमल थींदो, जॾहिं त पाबंदी ईंदड़ हुकूमत ताईं बरक़रार रहंदी। को बि लाइसेंस जारी कंदड़ अथॉरिटी हथियारनि जो नओं लाइसेंस जारी न करे सघंदी, जॾहिं त हथियारनि जे वापार जे लाइ डीलरशिप जो नओं लाइसेंस बि जारी न कयो वेंदो। तर्जुमान मूजिब रुगो गैरमामूली ऐं ख़ासि केसनि में हथियारनि जा लाइसेंस जारी करण जी इजाज़त ॾेई सघे। अहिड़नि केसनि में लाॻापियल इख़्तियारनि खां अॻुवाट मंज़ूरी वठणु लाज़मी हूंदी। क़ाइदनि ऐं ज़ाब्तनि मूजिब ख़ासि केसनि में घरू

0: हारियुनि जे हक़नि बाबति साल 2025 जे सालियानी 10 रिपोर्ट जारी कई वई। रिपोर्ट जी पधराई तक़रीब खे ख़िताब कंदे हारी वेलफेयर एसोसिएशन जे मर्कज़ी सदर चयो त सिंध में किरोड़े हारियुनि जा आइनी, कानूनी ऐं इंसानी हक़ मुतासिर थी रहिया आहिनि। हुननि मुतालबो कयो त हारियुनि जे लाइ सूबाई ऐं क़ौमी असेंबलियुनि तोड़े सेनेट में ख़ुसूसी नुमाइंदगी ॾिनी वञे, ज़रई ज़मीन जे निज़ाम में सुधार आंदा वञनि ऐं बेज़मीन हारियुनि खे क़ानूनी तौर रजिस्टर्ड करे हारी कार्ड जारी कया वञनि। रिपोर्ट में उहो बि मुतालबो कयो वियो त बेज़मीन हारियुनि ऐं हरियाणियुनि खे सरकारी ज़मीन, रिहाइश लाइ प्लाट ऐं बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि, जॾहिं त ज़रई मज़ूरनि खे सोशल सिक्योरिटी ऐं रजिस्ट्रेशन करे हुकूमत पारां मुक़ररु कयल घटि में घटि उजरत ॾिनी वञे। इंसानी हक़नि जे अॻवाण पिण हारियुनि जे बुनियादी हक़नि बाबति ख़दशनि जो इज़हार कंदे चयो आहे त हरियाणियुनि खे विरसे में मिलंदड़ ज़मीन जे रेवन्यू रिकॉर्ड में मुंतकिली ऐं ॿियनि क़ानूनी मामलनि ते बि ध्यानु ॾियणु ज़रूरी आहे। रिपोर्ट मूजिब 2025 दौरान सिंध में औरतुनि ऐं छोकिरियुनि ख़िलाफ़ तशदुद जा 772 केस रिपोर्ट थिया। उन्हनि में 218 क़त्ल, 138 अगवा, 124 ख़ुदकुशियूं, 104 रेप या जिनसी ज़्यादती, 24 घरेलू तशदुद, 72 गैरत जे नाले ते क़त्ल ऐं 35 जबरी शादियुनि जा केस शामिल आहिनि। ज़िले लिहाज़ खां खैरपुर में 75, लाड़काणे में 55, दादू में 45, सखर में 40 ऐं घोटके में 35 वाकिया रिपोर्ट थिया। रिपोर्ट में चयो वियो त 2025 दौरान कबायली ऐं फिरके वाराणी तशद जे वाकियनि में 337 माण्हू मुतासिर थिया, जिन मां 136 मारिजी विया ऐं 201 ज़ख़्मी थिया। रिपोर्ट मूजिब खैरपुर ज़िलो कबायली तकरारनि खां वधीक मुतासिर इलाइक़ो मां रहियो, जॾहिं त अहिड़नि वाकियनि सबबि बहराड़ी जी मईशत, ज़रात ऐं हारियुनि जे रोज़गार ते पिण असरु पियो। रिपोर्ट मुताबिक़ 2018 खां 2025 ताईं ज़रई शोबे में 10,053 हारियुनि ऐं मज़दूरनि खे जबरी पोरे मां आज़ादु करायो वियो। उन्हनि मां उमरकोट में 4,068, मीरपुर ख़ास में 1,764 ऐं सांगड़ में 1,576 केस रिपोर्ट थिया। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त 2021 खां पोइ जबरी पोरे जी रिपोर्ट थियल केसनि में घटिताई ज़रूर आई आहे, पर हारियुनि जे हक़नि तहफ़ुज़ ऐं कानूनी सुञाणप बाबति मसला अञा बि मौजूदु आहिनि। हीअ रिपोर्ट हिकु अहम सवाल ज़रूरु उथारे थी त सिंध जी ज़रई मईशत में बुनियादी किरदार अदा कंदड़ हारियुनि खे संदन कानूनी, मुआशी ऐं इंसानी हक़ कॾहिं मुकमल तौर ते मिलंदा। हीउ हुयो हिन वक़्त जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
0: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, भुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां

0: साढ़ा छह वगे शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03132525786।
1: जी हा, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
2: 90.4। कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
0: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786।
0: जी हाँ 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।